0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अदिति के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको अदिति।
1: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर अपने बड़े अक्षरों में लिखा था, जे गौसिया को मत छोड़ो। इस कदम से शगस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से शगस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि उस समय केयर स्टार्मर की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने इस बिल को अलग रख दिया था। अब जहां अगस्त महीने समाप्त होने चला है, वहां पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ में कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया गया कि मॉरिशस सरकार की दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से ज़्यादा बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई है। इनमें 500 से ज़्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं। राहत कार्य जारी हैं। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर सतर्कता बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन संबद्ध तटीय इलाकों में भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:21 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।
2: Your weather forecast on RM2 Radio Musti।
1: तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 बजे मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मर्दूद से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला।

और जब नबी ने अपनी एक बीबी से एक राज की बात फरमाई, फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी और अल्लाह ने उसे नबी पर जाहिर कर दिया, तो नबी ने उसे कुछ जताया और कुछ से चश्म पोशी फरमाई। फिर जब नबी ने उसे उसकी खबर दी, बोली, हुजूर को किसने बताया? फरमाया, मुझे इल्म वाले खबरदार ने बताया।

उनका रब करीब है, अगर वो तुम्हें तलाक दे दें कि उन्हें तुमसे बेहतर बीबियां बदल दे, इताअत वालियां, ईमान वालियां, अदब वालियां, तौबा वालियां, बंदगी वालियां, रोजादारें, बियाहियां और कवारियां।

ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्त कर्रे फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। ऐ काफिरों, आज बहाने न बनाओ, तुम्हें वही बदला मिलेगा जो करते थे।

ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे उतार दे और तुम्हें बागों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बहें, जिस दिन अल्लाह रुस्वा न करेगा नबी और उनके साथ के ईमान वालों को। उनका नूर दौड़ता होगा उनके आगे और उनके दाहिने। अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तुझे हर चीज पर कुदरत है।

0: और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फरमा बरदारों में हुई।
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने न तो अपने लिए कोई बेटा बनाया और न ही उसकी सल्तनत ओ फरमा रवानी में कोई शरीक है और न कमज़ोरी के बायस उसका कोई मददगार है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसी को बुज़ुर्ग तर जानकर उसकी खूब बराई बयान करते रहिए। बहवाला सूरह अल इसरा उर्दू तर्जुमा।

एक ऐसा उजाला के हो हर रंग दुबाला, जिसके है रहा गर्द सदा नूर का हाला। है आमद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार दो आलम, दुनिया की हर एक ज़ात से जो ज़ात है बाला। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले।

उसे मौसीकी या गाने के अंदाज में नहीं बल्कि अकीदत, अदब और एहतराम के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उस रहमतों और बरकतों वाले महीने से फैज़याब होने, कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।

बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीमुल शान अखलाक पर फ़ाइज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु।

0: कसा काय मंडली
1: योर काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल डे ऑल नाइट राइट हियर ऑन योर वन एंड ओनली स्टेशन
2: आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो.

મોટા

में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, मनुष्य को इस मायामय संसार को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना है, जहाँ प्रभु से ऐक्य स्थापित कर मन ज्ञानयुक्त हो जाता है और हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं।

श्रोताओं, भक्त मन वचन तथा कर्म से कभी किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता। वह तो सर्वथा शुद्ध विचार रखने वाला है। वह भी अपने इष्ट की तरह दीन दुखियों पर करुणा दिखाते हुए तथा मूल्यों को अपनाते हुए धर्म के संरक्षण में अपना सहयोग देता है।

0: शिव शंकर नमामि शंकर।
1: जय शिव शंकर नमामि शंकर।
2: श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, संपूर्ण निरोगी जीवन के लिए एवं पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है और अपने दुखों के निवारण का मार्ग पाकर संतोष का अनुभव करता है।

श्रोताओ, जिनके मन में प्रभु का वास है वे सज्जन पुरुष पर द्रोह को सर्वथा त्याग देते हैं और शांति को अपनाकर दूसरों को जीने के तरीके सिखा जाते हैं।

श्रोताओ, दुख व्यक्ति को ईश्वर के समीप पहुंचाता है। दुख में व्यक्ति के हृदय का विकास होता है, विस्तार होता है। सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता दुख में ही है। इसलिए दुखों को भी जीवन में अपनाकर ईश्वर की याद करने का सुअवसर खोना नहीं चाहिए।

श्रोताओं, हृदय के संवेदनाओं के सहज उद्गार साधना में प्राप्त होते हैं। ईश्वर की निकटता इन्हीं संवेदनाओं के परिष्कार से हमें छुटकारा दिलाती हैं।

श्रोताओं, इस सुखमय संसार में आराधना ही जीवन की नैया को पार करती है। आराधना में जो शक्ति होती है वह अन्यत्र नहीं मिलती। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

烈欢快的节奏总能让人心情舒展。接下来这首带着浓浓烟火与风情，继续感受这份热闹，请听《哎呦我的姑娘》。

热闹暂歇，让我们把心境放缓，悠扬辽阔的歌声扑面而来，一起聆听苹果香。

时光沉淀下来的老歌永远不会褪色，一首家喻户晓的经典，周华健的《花心》，送给收音机前的每一位朋友。

温柔过后换一份洒脱俏皮，烦恼全都抛在脑后，一起来听草蜢的失恋阵线联盟。

熟悉的舞曲节拍再度登场，活力满满的经典老歌郭富城《对你爱不完》，请欣赏。

0: एक्चुअली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अभी। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। 12 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक जारी रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन होने की वजह से तेज हवाएं बह रही हैं और ठंड महसूस की जा रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर बारिश होती रहेगी। कल हुई कैबिनेट की बैठक में हाल ही में डर्बन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 46वें सैडेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी पर विचार किया गया। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने क्षेत्रीय एकीकरण और सदस्य देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के प्रति मॉरिशस की प्रतिबद्धता को दोहराया। भू राजनीतिक तनावों, आर्थिक चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने क्षेत्रीय रेजिलियंस को बढ़ाने की मांग की, जिसमें विशेष रूप से हरित और स्मार्ट औद्योगिकरण, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल एम्बेसी विलेज बनाने का भी प्रस्ताव रखा और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत की। ऐसे समय में जब मॉरिशस ने भारत के साथ अगले 5 वर्षों के लिए अपने ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित कर लिया, विदेश व्यापार के हालिया आंकड़े देश के आयात पर ऊर्जा बिल के भारी बोझ को दर्शाते हैं। दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा बढ़कर, यानी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़कर लगभग आधा, यानी कि 50% अधिक हो गया है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा विदेश व्यापार पर जारी इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स के अनुसार अप्रैल और जून के बीच व्यापार घाटा बढ़कर 27.65 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, जबकि पहली तिमाही यही रकम 45.6 बिलियन रुपए था। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि बुधवार को नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद हालात बेहद भयावह हो गए हैं। मध्य और दक्षिणी नेपाल में 200 किलोमीटर लंबे भोटे काशी त्रिशूली नारायणी नदी मार्ग पर स्थित मुर्दा घर पूरी तरह से भर चुके हैं और उनकी क्षमता जवाब दे गई है। बाढ़ में बह गए लोगों के शव जैसे जैसे नदी के निचले इलाके में मिल रहे हैं। प्रशासन को मजबूरी में शवों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकारी इमारतों और सामुदायिक भवनों को अस्थायी मुर्दा घरों में तब्दील कर

0: करना पड़ा। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। एवेन्यू पिंसन सा सुदना कैथोबोन में 41 साल की 41 years old की श्रीमती नैति देवी जानगी पैदाइशी नाम बकोरीसन और जिन्हें सब लोग विदिशा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे उन्हीं के घर एवेन्यू पिंसन सुदना कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। लक्ष्मी रोड लेक्सपेरेंस ट्रेबुशे में 72 साल की 72 years old की श्री रामराज दौलत जिन्हें सब लोग पंडित विजय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर लक्ष्मी रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। टैगोर रोड रिशमा में 70 साल की 70 years old की श्री प्रकाश रामभुजन जिन्हें सब लोग प्रवीण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी माँ श्रीमती रेवती रामभुजन के घर टैगोर रोड रिशमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेवेंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: हमारे सभी म्यूजिक के चाहने वालों को अनीता का सादर नमन स्वीकार कीजिए। हेलो, आदाब। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक और झक्कास होंगे। वेल, दोस्तों, अभी आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफर का लुफ्त उठा रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन अभी से लेकर 2 बजे तक। तो 2 घंटे हैं हमारे पास, तो आइए आप और हम मिलकर इस सफर को खुशियों और यादों के रंगों से भर दे और इसको यादगार बना दे। और जो पहला गाना है, मेरी पसंद का गाना, आप लोगों के नाम।

मान लीजिए हमारा कहना। और यहाँ पर दोस्तों बेशक आप लोग जो हैं फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं 4028070 पर, या फिर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं 5250620 पर। कभी अजनबी थे लेकिन हम तो कभी अजनबी ही नहीं थे। चलिए यहाँ गाना आप लोगों के नाम।

0: जी दोस्तों, इस गाने को पसंद किया है सचिन जी, पंप म्यूजिक से वे साथ दे रहे हैं। तो आपकी मांग पर यह गाना फिल्म है शतरंज।
1: ये मिल गया।

0: बदकम्मा, बदकम्मा,
1: यंकन्ना, यंकन्ना,
2: बदकम्मा।

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: यंग कन्ना
2: बदकम्मा।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यह गाना सुनकर आशा करते हैं कि आप सबके चेहरे पर एक स्माइल, एक मुस्कान आ गई हो। बकम्मा ऑफ कोर्स महबूब साहब को कौन भूल सकते हैं। उनकी जो अदाएं हैं, उनकी जो एक्टिंग है, साथ ही साथ जो कॉमेडी वे करते थे, लाजवाब। और दोस्तों, यहाँ पर जो हैं हमारे साथ दे रहे हैं मनोज सोहन जी लिस्पेरांश त्रिबुशे से। और आप कहते हैं कि जब तक आप हमसे बात नहीं करते आपको अच्छा नहीं लगता, तो थैंक यू इसके लिए जी। और आज आपकी पसंद है फिल्म राधना का गाना, ऑफ कोर्स कोरा कागज था ये मन मेरा। लेकिन इस कार्यक्रम से आपका जो मन है वो कोरा नहीं रहेगा, यहाँ पर गानों का रंग जो है हम भर देंगे यहाँ पर आपके लिए। और ऑफ कोर्स यह गाना जाएगा आपकी प्यारी एंड लवली पत्नी नजीमा के नाम, पूरे सोहन परिवार ऑफ लिस्पेरांस त्रिबुशे, साथ ही साथ गया सिंह आश्रम के जितने बुजुर्ग हैं उनके नाम जाएगा, और जितने भी लोग बीमार हैं और यहाँ कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ गाना। और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आप जो हैं ठीक हो जाए।

जी दोस्तों, हमने इस कार्यक्रम को आपके नाम लिख दिया है, जहां हम आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं। और यहां पर किसका मैसेज आया है, यहां पर शमा जी साथ दे रही हैं खोंगुप से, और आपकी फरमाइश है कि लता जी का गया हुआ फिल्म अकेली मत जइयो का गाना, और यही गाना जाएगा ऑफकोर्स आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता है, केशव युदेश है, आपके नेफ्यूज, आपकी सहेलियाँ हैं विना रामफल, विश्वानी दुखी और साथ ही साथ नंदिनी उकलू।

0: सफर।
1: जी दोस्तों, वाकवास से फुलवंती जी बड़े चाव से कार्यक्रम को सुन रही है और आपकी फरमाइश है फिल्म सांझ और सवेरा का गाना, और यही गाना जाएगा पूरे बालगोबीन परिवार के नाम MBC परिवार के लिए। थैंक यू जी इसके लिए, और आपके सभी जितने जान पहचान हैं उनके नाम यह गाना।

0: की दिल।
1: जी दोस्तों, नोटरडम से रेहाने जी साथ दे रही है और काफी दिनों के बाद हमारी बात हुई है। फिल्म बेवफा का यह गाना विशेषकर जाएगा माला फाउदो के नाम आपकी सखी है, साथ ही साथ आपकी ननद सुरेखा के नाम और उन लोगों के नाम जिन्हें यह गाना पसंद है।

जी दोस्तों, सिर्फ याद ही रह जाती है। कहा जाता है कि वो छोड़ के गए हमें, ना जाने उनकी क्या मजबूरी थी। वो छोड़ के गए हमें, ना जाने उनकी क्या मजबूरी।

दी थी, खुदा ने कहा इसमें उनका कोई कसूर नहीं। छोड़कर जाने वाला क्या जाने, यादों का बोझ कितना भारी होता है। जी दोस्तों, यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है, किस की ओर से? रोमा प्यासान जी की ओर से। और आप कहती है कि हो सके तो आज हमारी बहन जी, जिन्हें सुमेधा शिवका कहते थे और वे कविता के नाम से भी जानी जाती थी, तो उनके लिए, उन्होंने बहन जी को हाल ही में खोया है। और यह गाना विशेषकर रोमा जी की ओर से सभी जगदम्बी एसएसएस के स्टाफ और स्टूडेंट्स की ओर से, साथ ही साथ हमारी ओर से भी। और वे कहते हैं कि वे बहन जी को बहुत ही मिस करेंगे। बहन जी थी ही ऐसी, बहुत ही प्यारी बहन जी, वेरी जोवियल, हमेशा खुश रहने वाली बहन जी। और अचानक से आप हमें छोड़कर चली गई। आपके स्टूडेंट्स बहुत ही दुखी हैं, रो रहे हैं। सो जहाँ भी आप गई हुई हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आप वहाँ पर ठीक ठाक रहे। और शायद आप वहाँ से हमें देख रही हैं, तो आपकी याद में फिल्म यादें का प्यारा सा गाना, यू विल बी मिस्ड बहन जी।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हमारा आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और ठीक बजे आप समाचार सुन पाएंगे और उसके बाद फिर से हमारी मुलाकात होगी।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा जी। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणी, सभी को नमस्कार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में भाग लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर राम प्रसाद सरोजबाली की मौजूदगी में ये परेड लगाई गई। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर एवं पवित्र प्रतिबद्धता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि वे सुब्रमण्य कृष्णन की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेज हवाओं और ऊंची लहरों समुद्री लहरों की चेतावनी सोमवार 31 अगस्त 2026 तक दिन के 10 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये जानकारी नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर के कम्युनिके में दी गई, जो मौसम विभाग के बुलेटिन के बाद जारी किया गया। दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण पूरे मस्करिंस में मौसम बहुत ठंडा और हवादार रहेगा। दक्षिण पूर्वी हवाएं औसतन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिनके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के बाहर समुद्र बहुत उग्र रहेगा। दक्षिण पश्चिम से आने वाली लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक हो सकती है। उन ऊंची लहरों के कारण विशेष ज्वार के समय समुद्र का पानी तट की ओर बढ़ सकता है और निचले तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। ये खतरा खासतौर पर द्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अधिक हो सकता है। ऐसे में जनता से सावधानी बरतने की मांग की जाती है। विदेश में नेपाल में बचाव कर्मी लगभग 2500 लापता लोगों की तलाश और नेपाल चीन सीमा पर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अपने प्रयास तेज कर रही हैं। ये कार्रवाई उस भयंकर बाढ़ के 3 दिन बाद हो रही है, जिसमें कम से कम 623 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और इस दुखद समय में मॉरिशस नेपाल और चीन की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपने फेसबुक पेज पर संदेश जारी कर दोनों देशों की सरकारों और जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने विशेष रूप से इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति जताई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आशा व्यक्त की कि शोकाकुल परिवारों को आने वाले दिनों का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस मिले। उन्होंने ये भी कामना की कि प्रभावित समुदाय इस त्रासदी से उभरे और अपने जीवन तथा क्षेत्रों का पुनर्निर्माण कर सके। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। लक्ष्मी रोड लेस्पेरेंस त्रिबुचे में 72 साल के 72-year-old श्री राम राज दौलत जो पंडित विजयी से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान लक्ष्मी रोड लेस्पेरेंस त्रिबुचे से उठाकर दाह संस्कार के लिए लेस्पेरेंस त्रिबुचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। टागोर रोड रिशमो में 70 साल के 70 year old

0: ओल्ड श्री प्रकाश रामभोजन, श्री प्रकाश रामभोजन जो प्रवीण से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनकी माँ रेवती रामभोजन के मकान टैगोर रोड रिश्मा से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM और एवेन्यू पिनसन सिडना काठबोन में 41 साल की 41-year-old श्रीमती नैती देवी जांगी, श्रीमती नैती देवी जांगी पैराशी नाम बकोरी सेन जो विदिशा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनके मकान एवेन्यू पिनसन सिडना काठबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: सुहाना सफर। जी दोस्तों, 1:05 हुए हैं और सुहाना सफर कार्यक्रम में फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत है। और यहाँ पर अनीता साथ दे रही है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। जी दोस्तों, 1 घंटा तो चला गया, अब 1 घंटा बाकी है यहाँ पर। और यहाँ पर कई लोग जो हैं साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी जो हैं आसरा लेकर इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं, तो हम कहते हैं धन्यवाद इसके लिए। और नवीन जी मोताय ब्लॉन्च से साथ दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आज जो है 4 साल हो गए कि आपकी माता जी इस दुनिया से जो हैं चली गई और आप उनको याद कर रहे हैं। तो चलिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर वाला गाना आपके नाम और आपकी माताजी के नाम। साथ ही साथ श्रातुडिबिनागर से ज्योति जी साथ दे रही है यह गाना उनके लिए, अश्नी रेखा सुरेखा और पूरे माधव परिवार के नाम।

त्रियुली से धीरज जी जो हैं साथ दे रहे हैं और फिल्म तदीपार का गाना आपके नाम।

जी दोस्तों, अगर आपको भी दिल की बात करनी है तो मौका है, दस्तूर है और यहाँ पर हम हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ खास कहना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 5250-6200 पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। और यहाँ पर जो हैं सुदेवी जी मुका से, वे भी कुछ

कहना चाह रही है अपने पति से, पति देव से, कि कह दो ना कि आप मुझसे दोस्ती करोगे, तो चलिए वे भी ये कह रही है दोस्ती कर लो और मौसम है मदमस्त। ऑफ कोर्स सुदेवी की ओर से यहाँ गाना पतिराज के लिए, बच्चों के नाम और सभी सुनने वालों के नाम।

गुडलैंड से सरिता जी साथ दे रही है और आप कहती है, एक प्यारा सा मैसेज आपने भेजा है कि हेलो अनीता जी, हेलो सरिता जी, थैंक यू जी इतने अच्छे गाने चलाने के लिए, थैंक यू जी कि आप साथ दे रही है। आपकी फरमाइश है फिल्म झुक गया आसमान और यही गाना जाएगा आपके पूरे परिवार के नाम ऑफ कोर्स। हैव ए नाइस सैटरडे, थैंक यू जी आपको भी, हैव ए नाइस सैटरडे। और यही गाना जाएगा किसके नाम, सुबोध जी और उनकी स्वर्गीय पत्नी के नाम जो अभी वाकवा से साथ दे रहे हैं, और सुलफिनों वाकवा से विश्वानी पवन जी के नाम भी यहाँ गाना जाएगा।

0: खाना सफर।
1: जी दोस्तों, कल कई भाइयों और बहनों ने राखी का पावन पर्व मनाया और कहा भी जाता है कि प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमर रहा संसार। सारे जग में सबसे सच्चा होता है प्यार, बहन का प्यार। जी दोस्तों, कई भाइयों और बहनों ने यहाँ पर्व मनाया और आज भी जो है परिवार वाले आए हुए हैं। कल से शुरू हुआ है यहाँ और वीकेंड भी आया उसके साथ साथ, तो कई परिवार वाले अभी तक घर पर होंगे। और इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर अनीता जी जो है एक गाना मांग रही है सभी भाइयों के नाम, और उनके भाई है सुभाष जी, सचिन जी, राज जी, यूके से है अजय येशु, कज़िन भाई हैं ईश्वर, जगदत्त, मनोज, और जितने लोगों ने भाई बहन का यहाँ पावन पर्व मनाया उनके नाम यहाँ प्यारा सा गाना भाइयों और बहनों के नाम।

दोस्तों, कहा गया है कि कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझना, कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस दिन आपका वक्त बदलेगा, आपको याद आएगा कि आपने कितनी बार टूट कर खुद को संभाला था। लोग सिर्फ आपकी कामयाबी देखेंगे, आपकी थकान नहीं। इसलिए यदि आज कोई ताली ना बजाए तो कोई बात नहीं, फिर भी चलते रहना चाहिए। आपका जो सफर है वह किसी और की तस्दीक का मोहताज नहीं है। जी दोस्तों, अनीता जी मोंडालबिया से साथ दे रही है, लेकिन अनीता जी जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गाना चुना है। और आपके दोस्त है करुणा, अमृता और बाकी सभी दोस्त। साथ ही साथ मधुरी जी कह रही है कि बिल्कुल यहाँ दिन ढका से शुरू हुआ और आपके लिए भी अगला गाना आपके नाम और परी के नाम। गाना है फिल्म पिघलता आसमान से, तेरी मेरी प्रेम कहानी, और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह गाना जरूर अच्छा लगेगा।

जी दोस्तों, रिवे जोहपा से मालाजी साथ दे रही है और आपकी फरमाइश है एक सौ एक दिल सौ अफसाने का गाना, और यही गाना जाएगा सत्यम, किरण, कविश, कनिल, कनिश आपके नाम, केविन और शिव के नाम।

0: सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, आप ही आप है तभी यहाँ कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। और यहाँ पर प्रकाशवती जी बेल्जियम से साथ दे रही है हमेशा की तरह, और आप कहती है कि वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, आशिकाना है, इसलिए ऑफ कोर्स योर फेवरेट सॉन्ग मौसम है आशिकाना, आपने यहाँ गाना मांगा है। लेकिन यहाँ पर मॉरिशस में मौसम बिल्कुल जो है अच्छा नहीं है, यहाँ पर तेज़ हवा बह रही है। और सो टेक योर प्रिकॉशन जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं। और चूंकि बहुत समय नहीं रह गया है, जिन लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन लाइन नहीं मिली, तो उनके नाम भी हम इस गाने में जोड़ रहे हैं। बाबू अनंतवा जी हैं कोट्रोबोन से, छोटी है पोलांजे से, नंदा जी है पाई से, विमला जी हैं गांवगुप से, निर्मला जी है फ्लैक से। तो आप सब के नाम यह गाना, और विशेषकर प्रकाशवती जी और क्षिति के नाम मौसम है आशिकाना फिल्म पाकिज़ा एंड वन एंड ओनली लता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, फिल्म कुदरत का यह गाना हरीश जी ने मांगा है और आप एंजॉय करें कार्यक्रम को बोबासा से। और यही गाना जाएगा आपके स्पेशल पर्सन के नाम, आपकी अनु के नाम। हमें कितना प्यार है आपसे ये हम नहीं जानते। लेकिन जी नहीं सकते हैं आपके बिना।

जी दोस्तों, हमारे जाने का समय आ गया है और किसी ने हमें लव मैरिज का गाना मांगा है लेकिन नाम नहीं बताया, तो आपके नाम यह गाना जाता है और उन तमाम लोगों के नाम जो हमें सुन रहे हैं। और आशा करते हैं कि आपको हमारा सिलेक्शन अच्छा लगा। तो अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर। अनिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार, बाय बाय।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण न पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सोहजबारी की मौजूदगी में ये परेड लगाई गई। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तटों तक भी पहुंच सकती हैं। खासकर दक्षिण और पश्चिम में आम जनता से सावधानी बरतने की मांग की जाती है। तेज हवाएं बहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। आम जनता से यहां वहां उड़ती चीज़ों से बचने और खासकर सड़कों पर क्रॉसविंड्स के कारण ज़्यादा सतर्क रहने और ऊंचाई वाली जगहों पर काम करते वक्त ज़्यादा सतर्क रहने की मांग की जा रही है। विदेश की खबरों में ये दुखद खबर। नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। बारिश के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं जो पर्यटक के रूप में वहां घूमने गए थे या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। और रूसी सेना द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में किए गए हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में कम से कम 50 आवासीय इमारतें प्रभावित हुई हैं, इनमें बुजुर्गों का एक होम भी शामिल है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। Chok Samachar Sunye, Avenue Pinson, Sudna 4 Bonmi, Avenue Pinson, Sudna 4 Bonmi, Ikiali Sisalki, 41 years old, Ki, Shrimati Naiti Devi Jangi, Shrimati Naiti Devi Jangi, Pedashinam Bako Hisen, or Jo Vidisha Kinam Sizia Dajani Jatithion Kimriti Hokai Hem, Arti Sapeher Tin Baje. उनके मकान एवेन्यू पैंसों सुदना कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधीपाल मां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आरएन फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और हमारा संपर्क सूत्र रहेगा 4028070 पर। चलिए हम इतिहास की एक और खिड़की पे झांकते हैं और देखें वहाँ से कौन से व्यक्तित्व की खुशबू जो है वो लगातार आ रही है। श्रोताओं, बॉलीवुड की फिल्में केवल भारत ही नहीं दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया है और लोग उनको देखना बहुत पसंद करते हैं। उनके सेट, उनकी ड्रेस सेंस, उनके थीम्स, उनके जो उसमें पार्ट लेने वाले जितने कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग इत्यादि, उस सबको भारतीय कहानियाँ, उसे विदेशी लोग भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमारी पुरानी फिल्मों में कुछ जादू था, उनके गीतों में, उनके डायरेक्टर ने उनको जैसे बनाया। तो आज हम ऋषिकेश मुखर्जी को याद करेंगे, जो महान निर्देशक भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, और उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, जो मानवीय भावनाएं थी उनके साथ उन्होंने पूरी तरह से न्याय किया। मेरे साथ सुमिता भी जुड़ चुकी हैं, वे भी बंगाल की कल्चर को खूब अच्छी तरह जानती हैं। और ऋषिकेश मुखर्जी भी मूलतः बंगाली थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बंगाल की मिट्टी में कला जो है उसके कण कण में समाई है। आप जब बंगाल या कलकत्ता जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर परिवार में बच्चों को कला सिखाई जाती है। वह संगीत हो सकता है, वह कोई आर्ट हो सकता है, मूर्ति कला हो सकती है, तबला वादन हो, कुछ भी। मतलब अपने बच्चों में वे लोग आर्ट की सेंस ज़रूर डालते हैं। इस दृष्टि से बंगाल बहुत आगे है। आप बॉलीवुड में भी देखिए, जो पुराने हमारे संपादक या डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो फिल्में दी वे अपने आप में विशेष थी। क्यों सुमिता?
1: बिल्कुल। नमस्ते अलका जी, और हमारे सभी श्रोताओं का भी हम स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन पर। इतिहास के झरोखे प्रोग्राम है, और जैसे अलका जी ने कहा, आज हम ऋषिकेश मुखर्जी पर बात करेंगे। उनका जो जन्म है वो 30 सितंबर 1922 को हुआ था और 27 अगस्त 2006 को वो चल बसे थे, यानी कि जो है दो दिन पहले उनकी बरसी थी। तो चलिए इसी संदर्भ में हम इस महान फिल्म मेकर को याद करते हैं। और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेशक आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मों के बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो अभी के लिए इस गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्यों अलका जी?
0: बिल्कुल, चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत।

0: श्रोताओं, सचमुच मीत ढूंढना आसान नहीं होता है। मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मन का मीत, कितना सही गाना और अपनी पिक्चर में अभिमान में इसमें उनको फिट किया और इतना सुंदर गीत उन्होंने गवाया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और श्रोताओं, आपको पता ही है आनंद फिल्म जो 1971 में बनी थी, 1971 में, उसे कोई नहीं भुला पाता है। वो मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, इतना सुंदर गीत कि आज भी जब उस आप गीत को गुनगुनाते हैं तो राजेश खन्ना आंखों के सामने आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने उसमें जो रोल अदा किया, मतलब राजेश खन्ना ने जो जीवन का अर्थ लोगों को सिखा दिया। लोग रोते थे, बीमार हैं तो डिप्रेशन में जाते थे, लेकिन वहाँ सिखाया कि ऐसी बीमारी जिसमें आपको पता है कि आप मरने वाले हैं, उसके बावजूद भी आप कैसे जी सकते हैं और दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा समाज में एक परिवर्तन भी आया, बहुत से लोगों ने अपनी बीमारियों से लड़ना सीखा, खुशी से जीना सीखा कि बीमारी आई है, मरना तो है ही, और अगर पता चल जाए कि मैंने कब मरना है तब तो और भी अच्छा है कि मैं अपना वो जो समय है, मुझे पता है कि मुझे अब जाना ही है, इस समय को तो मैं खूब अच्छे से जी लूँ और जितने किसी की मदद कर सकूँ। तो आनंद फिल्म जो उन्होंने बनाई बहुत ही संवेदनशील और भावात्मक फिल्म थी और बहुत बड़ा संदेश, मतलब लोगों के लिए छोड़ के गई यह फिल्म कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में दुख सुख बीमारी आती है, मतलब इतना भयानक मृत्यु का पता है उसका बावजूद भी आप कैसे हंसकर जी सकते हैं।
1: बिल्कुल। और ऋषिकेश मुखर्जी की बात करें अलका जी, तो वो जीवन से जुड़ी फिल्मों को बनाने के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध थे, मतलब कि आम व्यक्ति के जीवन
0: और
1: में
0: गहरा संदेश छोड़ा उन्होंने फिल्म के माध्यम से।
1: और जैसे आनंद फिल्म की आपने बात की, वहीं पर ये जो है इन्होंने केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन की थी और अपने करियर के शुरुआती दौर में बतौर कैमरामैन भी ये काम कर चुके हैं,
0: तो केमिस्ट्री से थे ना, तो इसलिए ये सब चीजें समझ थी उनको
1: जी। और थिएटर से भी इनका काफी लगाव था, तो ऐसे बस धीरे धीरे इनका फिल्मों में जो है सफ़र शुरू हुआ और चार दशक से भी फैले अपने करियर में इन्होंने 40 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई। और चलिए आनंद फिल्म की बात कर रहे हैं तो आनंद फिल्म का गाना हो जाए,
0: चलिए सुनते हैं श्रोताओं गाने को।

0: चले जाए अकेले कहां।
1: सचमुच खामोशी को चुनकर एक दिन अकेले ही जाना होता है। आप सोचिए उस फिल्म के माध्यम से उन्होंने जीवन का कितना बड़ा संदेश दिया। जहाँ इतनी गंभीर फिल्में ऋषिकेश जी बनाते थे, वहीं पर ही कुछ ऐसी फिल्में भी उन्होंने बनाई जो आपको हंसाती भी हैं, ज़िंदगी का संदेश भी देती हैं और ज़िंदगी में कुछ हल्का फुल्का भी आपके सामने प्रस्तुत कर देती हैं। अनाड़ी जो 1959 में उन्होंने बनाई थी, हिंदी की फिल्म, ये कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म में राज कपूर, नूतन, मोतीलाल और ललिता पवार थे और शंकर जयकिशन ने इसमें म्यूज़िक दिया था। और सबसे बड़ी बात, यह फिल्म 1959 पर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। इतनी प्यारी, इतनी सरल फिल्म है कि उसमें वो जो उसका अनाड़ीपन है उसको देखकर ही व्यक्ति को आनंद आ जाता है। और ऐसी फिल्मों को आप बार बार देखना पसंद करते हैं, जानते हैं व्यक्ति जीवन में बहुत भारी भारी काम करता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन आप कभी कभी ऐसी हल्की फुल्की फिल्मों को जब देखते हैं घर में बैठ के, तो आपका चित्त जो है एकदम हल्का हो जाता है। और ऐसी फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी ने दी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, मतलब जनता के मन की यह फिल्म थी। तो चलिए इस फिल्म का भी ज़रा आनंद लेते हैं।
2: इतिहास के झरोकों से

0: श्रोताओं, ऋषिकेश मुखर्जी स्वयं निर्देशक बने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्में उन्होंने दी, लेकिन बिमल रॉय के साथ भी उन्होंने काम किया। बिमल रॉय भी बंगाली ही थे, और जब उनके साथ उन्होंने काम किया तो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। 1951 में जब उनके साथ काम करते करते कमाल हो गई, एक और बिमल रॉय और दूसरे और ऋषिकेश मुखर्जी का दिमाग, हमें मिली दो बीघा ज़मीन और देवदास जैसी फिल्म। पहली देवदास फिल्म उन्होंने ही बनाई थी, उसी के बाद हमें दो और देवदास फिल्में मिली
1: जी।
0: अर्थात वो जो नॉवल था, उस नॉवल की जो कहानी थी देवदास नॉवल की, शरद चंद्र का नॉवल है, बंगाली में मूलतः लिखा गया है, और अब तो ये अंग्रेजी में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद मिलता है। और देवदास की कहानी तो अब बच्चे बच्चे को पता चल चुकी है, लेकिन पहली देवदास फिल्म इन्होंने ही बनाई थी। तो बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी ने मिलकर ये दोनों जब फिल्में बनाई तो ये दोनों फिल्में बहुत ही हिट हुई। और उसके बाद तो जब उनकी यात्रा अपने आप से शुरू हुई तो अनाड़ी फिल्म मैंने आपको बताया, उनको तो फिल्म फेयर उसमें अवार्ड में मिला। और तो और इसके बाद जितनी और फिल्म बनी, अनुराधा थी, छाया थी, असली नकली, अनुपमा आदि फिल्मों में आनंद, जिसमें हम विशेष रूप से अभिमान, नमक हराम, इन सब फिल्मों ने इतना नाम कमाया कि ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी हुई इन फिल्मों ने विशेष, जिसे कहते हैं ना, प्रसिद्धि प्राप्त की। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, हम उनको लेते हैं। हेलो, हेलो,
2: हाँ नमस्ते जी।
0: हाँ नमस्कार जी, कैसी हैं?
2: सब ठीक है जी।
0: क्या सुनाएंगे आज?
2: ठीक है ना?
0: हाँ बिल्कुल।
2: हाँ, आपको काम करना है ऋषिकेश मुखर्जी जी पर?
0: जी जी बिल्कुल।
2: हाँ, मैंने वो उसके दो फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गोलमाल और चुपके चुपके
1: जी।
2: ये इन दोनों में ना जो शुद्ध हिंदी आते हैं कहीं कहीं, हाँ बहुत अच्छा लगता है सुनने को, जब वो लोग उसे बोलते हैं तो फिल्म में। मैं चुपके चुपके पता नहीं हर 20 बार देख चुकी हूँ।
0: क्या बात है, मुझे देखनी पड़ेगी अब।
1: और अगला जो हमारा गाना है ना, वो चुपके चुपके फिल्म का ही है जो अभी हम चलाने वाले हैं।
2: अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया, कौन बोल रही है आप?
2: मैं शिवराज हूँ, अंजनी, अंजनी।
1: ओके अंजनी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अलका जी, अगर हम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की बात करें, जहाँ पर वो फिलोसफिकल फिल्में बनाते थे, वहीं पर इनकी काफ़ी ऐसी कॉमेडी फिल्में भी है जो काफ़ी पॉपुलर हुई है, जैसे कि गुड्डी, गोलमाल, और उसमें नाम शामिल होता है चुपके चुपके। इस फिल्म का ये

0: एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, इसमें जैसे उन्होंने बात की हिंदी की, वाकई में उसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन और जया भादुरी जैसे बड़े बड़े किरदार नजर आए थे।
1: तो चलिए इसी फिल्म का गाना जरा सुनते हैं।
2: इतिहास के झरोखों से

और श्रोताओं, इस तरह के गीतों से सजी हुई फिल्मों को देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी को पुरस्कार न मिलते, ये कैसे हो सकता था। दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड है, और इसी तरह से वे चेयरमैन रहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, जो भी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, और 2001 में पद्म विभूषण भी उनको मिला, जो भारत का कह सकते हैं कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब उन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और जिसे कहते हैं ना क्वालिटी, गुणवत्ता वाला था। एक तो होता

0: आप फिल्में बनाते जाएं लेकिन उसमें गुणवत्ता ना हो, लेकिन आपने जितनी फिल्म बनाई वो अपने आप में विशेष थी और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ऑनर से भी उनको सजाया गया। तो उन्होंने जो काम किए जितने भी स्वतंत्र भारत के बड़े बड़े कलाकारों के साथ, वो अपने आप में याद करने योग्य हैं।
1: बिल्कुल। और कुछ देर पहले अलका जी आप आनंद फिल्म की बात कर रहे थे जो इन्होंने ही बनाई थी। आनंद फिल्म को तो फिल्मफेयर की ओर से 3 अवार्ड मिले थे जो इन्होंने बनाई थी, और वहीं पर कई अन्य अवार्डों से भी ये नवाजे गए फिल्मफेयर की ओर से। इनकी बनाई हुई फिल्म नौकरी, मधुमती, अनोखी रात, आनंद, खूबसूरत जैसी फिल्मों को काफ़ी अवार्ड मिले हैं, और वहीं पर इन्हें फिल्मफेयर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया था 90 के सालों में। चलिए अभी के लिए खूबसूरत फिल्म का ये गाना हो जाए जिसमें रेखा नज़र आई थी, और ये फिल्म भी अपने टाइम की काफ़ी पॉपुलर फिल्मों में से एक है।
2: इतिहास के झरोखों से

श्रोताओं, इतना बड़ा कलाकार, लेकिन ज़िंदगी धोखा सभी को देती है। ऐसे ही ऋषिकेश मुखर्जी भी अपने अंतिम दिनों में क्रॉनिक किडनी फेलियर से जूझ रहे थे और मुंबई के अस्पताल में उनका डायलिसिस भी चल रहा था। अंत में उनको 6 जून 2006 को हॉस्पिटल में एडमिट

0: एडमिट किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा असहज, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको हो रही थी। और कुछ सप्ताह के बाद 27 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 2 महीने बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ रही। उनके वैवाहिक जीवन में उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। और 30 साल पहले जब वे मरे, उससे 30 साल पहले उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था, लेकिन उन्हें दूसरा विवाह नहीं किया और अपने बच्चों पर ध्यान दिया, अपने काम पर ध्यान दिया। और उनका छोटा भाई उनके साथ ही रहता था और बहुत बार उनकी फिल्मों में मदद भी करता था। लेकिन छोटा भाई जानवरों से बड़ा प्यार करता था, और आप देखिए उसने बहुत से कुत्ते बिल्ली पाले हुए थे। और ऋषिकेश मुखर्जी के अंतिम समय में उनके नौकर और ये कुत्ते बिल्लियाँ ही उनके पास थे। यद्यपि फैमिली के मेम्बर्स उनको मिलने आते थे, लेकिन ये जानवर उनके अंतिम समय तक उनका साथ निभा रहे थे। तो इतना पुरस्कार सम्मान पाने वाला लेखक भी जिंदगी के लड़ाई लड़ते हुए हारा।
1: बिल्कुल। और इनके जीवन में बनाई हुई फिल्मों की यदि बात करें, अलका जी कहते हैं लगभग 42 फिल्में इन्होंने बनाई, और 42 फिल्मों में जितने भी फिल्मों के नाम शामिल होते हैं, ज़्यादातर फिल्में जो है इनकी काफ़ी पॉपुलर हुई और हिट साबित हुई। यानी कि सोचिए कम समय में इतनी फिल्में बनाई और ज़्यादातर फिल्में जो है कमाल की रही। तो चलिए एक और गाना हो जाए जिसे हमने लिया है गोलमाल इस फिल्म से।
2: इतिहास के झरोखों से

0: सचमुच श्रोताओ, जिंदगी गोलमाल है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कहाँ गोलमाल हो रहा है और हम ही उस गोलमाल के शिकार हो रहे थे। और कभी कभी हम भी गोलमाल करते हैं, कभी अपने बच्चों के साथ, तो कभी अपने काम पर, तो कभी सहेलियों के साथ। ये जिंदगी गोलमाल ही है, इसीलिए बड़े डायरेक्टर ऐसी चीज़ों को ही पकड़ते हैं जो जिंदगी के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स भी बहुत से बनाए, उसका भी बहुत प्रसिद्धि उन्होंने पाई। हम हिंदुस्तानी तो उनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, 1986 के दिनों की बात है, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और बाद में भी कई बार देखा गया। ऐसे ही तलाश 1992 में, फिर धूप छाँव, रिश्ते, उजाले की ओर, अगर ऐसा हो तो इस तरह के टीवी सीरियल में भी हिट उन्होंने मतलब बहुत प्रसिद्धि पाई। तो कहना ये चाहिए कि ऋषिकेश मुखर्जी का जो सोच थी, जो उनकी सृजनात्मक प्रतिभा थी, वो डायरेक्शन में बहुत अच्छी चलती थी और वे भारतीय मन को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। जो मध्यम वर्ग है, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं, उसके जो संघर्ष हैं, उसके जीवन में जो खुशियाँ हैं, जो दुख हैं, इन सब सीरियल्स में उन्होंने वह सब कुछ पिरोया और इन सभी सीरियल्स ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की।
1: बिल्कुल, देखिए ना, एक व्यक्ति जिन्होंने 50 के साल में जो है अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्में बनाने की, और फिर वहीं 80 के सालों में आते आते टेलीविज़न सीरियल में जो है उन्होंने अपना रुख किया, जहां पर जितनी कामयाबी उन्हें फिल्मों में मिली उतनी ही कामयाबी उन्हें टेलीविज़न सीरियल में भी मिली।
0: क्यों, तो प्रतिभा सृजनात्मक थी ना, आप उनको कहीं भी खड़ा कर दें। अगर कोई आर्टिस्ट है गाने वाला, आप उसे पहाड़ पर खड़ा कर दें कि समुद्र के पास, उसके भीतर से गीत निकलेंगे ही निकलेंगे। वह एक निर्देशक थे, जिस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला तो उन्होंने लोगों के मन को पकड़ा
1: जी,
0: और जो जीवन की रियल दिक्कतें थी उसको इन सीरियल्स में उन्होंने डाला।
1: और उनके करियर की आखिरी फिल्म की बात करें तो झूठ बोले कौवा काटे, जो 1998 में आई थी, ये फिल्म इनके करियर की आखिरी फिल्मों में से एक थी और ये भी एक कॉमेडी फिल्म थी, क्योंकि अपने करियर के दौरान
0: प्रसिद्ध नहीं
1: उतने। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई तरह की फिल्में बनाई, उनमें कॉमेडी फिल्में भी काफी जो है इनकी लोकप्रिय हुई।
2: इतिहास के झरोकों से

0: श्रोताओं, जीवन चलने के लिए ही है लेकिन नियमों के साथ। ऋषिकेश मुखर्जी भी नियमों के बड़े पाबंद थे। उनका एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है कि एक बार एक बड़ा स्टार उनकी फिल्म के सेट पर 9 बजे की शिफ्ट जो थी उसके लिए 12:30 पहुंचा और ऋषि दा को पसंद नहीं था कि कोई लेट आए। तो जब वो स्टार आया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मेकअप हो गया और शॉट देने के लिए वो खड़ा होगा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आज शूटिंग नहीं होगी, अब देर बहुत हो गई है। लोग कहते थे उनका मूड कब बदल जाए पता नहीं, लेकिन असल में वो एक तरह से सज़ा दे रहे थे उस स्टार को कि जो 9 बजे की बजाय 12:30 आया था, ठीक है करवा लिया मेकअप लेकिन शॉट आज नहीं होगा। इसी तरह से अमोल पालेकर उनके साथ एक बार शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक शॉट दिया, ऋषिदा को बहुत अच्छा लगा लेकिन अमोल ने कहा कि नो, मैं इसको दोबारा करूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरत, लेकिन अमोल एक्टर थे, थोड़ा अड़ गए। अब अमोल पालेकर का ले लिया गया दूसरा शॉट, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म में वही पहले वाला शॉट लिया, दूसरे वाला नहीं लिया। तो अपने सिद्धांत और अपने नियम उनके बड़े हिसाब से वे चला करते थे।
1: तो चलिए इसी के साथ चलते चलते हम भी अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। आज का हमारा जो इतिहास के झरोखे प्रोग्राम था वो ऋषिकेश मुखर्जी पर आधारित था और जितने भी श्रोताओं ने हमारा साथ दिया धन्यवाद। अलका जी, चलिए मिलते हैं फिर अगले सप्ताह।
0: बिल्कुल, फिर मिलेंगे आपके साथ। आइए

0: से सुनते हैं और आप सबसे नमस्ते।
1: और तब तक हमारे श्रोताओं को बता दें कि 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो सवेरे चला था उसी का रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे 3 बजे के समाचार के बाद। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार आप सभी को।
0: नमस्कार श्रोताओं।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हम सुनिए, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुहजबाली की मौजूदगी में ये परेड लगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि वे सुब्रमण्यन कृष्णन की मौत की जो गुठी है वो सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तट तक पहुंच सकती हैं। खासकर दक्षिण और पश्चिम में आम जनता से मछुआरों से और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों से सावधानी बरतने की मांग की जाती है और तटों के पास सभी से भी दूर रहने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी समंदर में। इसके अलावा तेज हवाएं भी बहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। क्रॉस विंड्स के कारण सड़कों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। महात्मा गांधी संस्थान में आज सुबह देश के विरासतों, खासकर ऐतिहासिक जगहों और स्मारकों पर आधारित एक फोरम का आयोजन किया गया। इसमें गणराज्य के राष्ट्रपति और साथ में कला एवं संस्कृति मंत्री ने भी भाग लिया। इन विरासतों, स्थलों और स्मारकों की रक्षा के लिए और उनके मरम्मत के लिए कई कदमों का ऐलान किया गया। विदेश समाचारों में, नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। हालांकि बारिश के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं जो पर्यटक के रूप में वहाँ घूमने या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया जीजी, नमस्कार।
0: You're listening to RM3 Radio.

डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन के ये कथन अपने आप में बहुत ही सशक्त और आज के प्रासंगिक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती दीवार की ईंट में छिप जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, बल्कि एक शिक्षक की गलती सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में झलकती है। इसका मतलब यह है कि ए मीडियोकर टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन, अ सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। इसका मतलब यह है एक महान शिक्षिका प्रेरित करती है, जिन्हों को हम कहते हैं गुरुमा। नमस्ते और प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जहां बिल्कुल आज की चर्चा कार्यक्रम में एक ऐसे विशेष मेहमान आई हुई है जो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है और साथ ही साथ उनका नाम है गुरुमा।

0: स्मिता वेंकटेश, और वे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जहां पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने की दिशा में लोगों को प्रेरित करती हैं एक आध्यात्मिक यात्रा और एक भक्ति मार्ग में प्रशस्त करने के लिए। ममत्व का भाव, श्रद्धा और अनुशासन, हृदय की पवित्रता, इन सभी बातों को लेकर के वे अपने समर्पण भाव लेकर के सात समंदर पार करते हुए यहाँ पर आई हुई है। ज़्यादातर मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं कहूँगा क्योंकि ये अपमान होने के बराबर होंगे। ज़्यादातर मैं उनका संबोधन गुरु माँ से ही करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं गुरु माँ। नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते अभ्युदय, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: लगेगा, क्योंकि मेरे लिए तो अहोभाग्य है कि आप हमारे इस MBC की रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यहाँ पर आपकी आवाज़ यहाँ पर गुंजित हो रही है, बहुत बड़ी बात है। सबसे गुरुमा, आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि गुरुमा कौन है। मॉरिशस के उन लोगों के लिए जो आपसे पहली बार मिल रही है, जो क्या आपको लगता है कि एक परिचय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि परिचय देना महत्वपूर्ण है आपकी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर के, और इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, और श्री विद्या के जीवन का केंद्रीय मार्ग कैसी बनी?
1: अभ्युदय, मुझे तो पहले बात आपको देखकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और जिस प्रकार से आपने एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शक का जो इंट्रोडक्शन दिया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे मॉरिशस आकर के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सनातन धर्म के ट्रेडिशंस को काफ़ी प्रयास किया जा रहा है उसको संभालने का। मैं यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिली और मुझे एक बहुत अच्छा एक स्वरूप दिखाई दिया सनातन धर्म को यहाँ पर कैसे समझाया जा रहा है। मैं एक मंदिर में गई थी जहाँ पर 300 साल पुरानी मंदिर मूर्ति थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मॉरिशस में। मॉरिशस से मेरा पुराना एक रिश्ता भी है, हमारे पूर्वज
0: बिल्कुल
1: मॉरिशस आए हुए थे, तो कुछ लोग यहाँ पर हैं अभी भी रिलेटिव्स ऐसे। तो जब मैं छोटी थी, अराउंड में भी 10-12 साल की थी, तो मॉरिशस से
0: आए थे?
1: नहीं, मैं नहीं आई थी, वो लोग यहाँ से इंडिया आए थे।
0: अच्छा।
1: तो तब से मैंने सपना संजो के रखा था कि कभी मॉरिशस जाऊँगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे गुरुजन ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि तू जब पहली बार मॉरिशस उतरेगी तो गुरुओं का संदेश लेकर के तू मॉरिशस में उतरेगी। तो मेरे लिए ये बहुत खास मौका है। आपने पूछा कि मैं अपना परिचय दूँ, तो पहला परिचय ये है कि मैं अपने गुरु परंपरा का संदेश लेकर के यहाँ पर आई हूँ। इस गुरु परंपरा से कैसे जुड़ी? मैं छोटी सी उम्र से ही गुरु परंपरा से जुड़ी हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं, स्वामी दिव्य चेतनानंद जी। उनके गुरु हैं जो हैं बाबा भूतनाथ जी, कामाख्या से हैं, और ये असम में बहुत बड़ी देवी हैं कामाख्या में। और उनके और एक गुरु थे परमहंस निखिलेश्वरानंद। ये पूरी एक गुरु परंपरा है, सिद्धाश्रम गुरु परंपरा कहते हैं इसको, और कुछ लोग जानते होंगे नाथ गुरु परंपरा। ठीक है, तो हम इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, और ये नाथ गुरु परंपरा ऊपर जब जाती है तो दत्तात्रेय भगवान इनकी गुरु परंपरा से जुड़ी है, और इन्हीं के परंपरा के अंदर ही आदि गुरु शंकराचार्य जिनको सभी जानते हैं,
0: बिल्कुल
1: उस परंपरा से जुड़ी हुई है। तो मैं जब यहाँ पर बैठी हूँ तो 14 साल की उम्र में मेरा श्री विद्या में इनिशिएशन हुआ। श्री विद्या के साथ साथ 10 महाविद्या, आजकल लोग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है 10 महाविद्या, लेकिन मेरी बहुत छोटी सी उम्र में 10 महाविद्या में मेरा मुझे दीक्षा मिला था, और श्री विद्या में मुझे आदि गुरु शंकराचार्य से दीक्षा मिली है। वो जो सिस्टम है श्री विद्या का, उसको पूरे संसार में लोग जानते तो हैं। लक्ष्मी की पूजन होती है, लक्ष्मी की पूजन एक यंत्र पे होती है, उसको कहते हैं श्री यंत्र या श्री चक्र। मेरे पास इस समय श्री यंत्र है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये है श्री यंत्र, आप देख रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। तो इस पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, या इस पे श्री विद्या की पूजा होती है।
0: मॉरिशस में जब दिवाली पर्व शुरू होता है 2-3 दिन पहले, धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सब, तो उस समय ये श्री यंत्र का बहुत मतलब प्रयोग किया जाता है।
1: यस यस यस यस। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक मेरू वाला होता है, ये फ्लैट, ये भी होता है, तो ये भी श्री यंत्र है। तो इसकी जो साइंस है, इस साइंस में मुझे एक्सपर्टीज है,
0: क्या बात है।
1: तो मुझे इसमें सिखाया गया, इसको समझने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं। मुझे 12 साल लगा क्योंकि मैं अपने गुरुजनों के साथ उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली, लेकिन जब मुझे सिखाने का दायित्व दिया गया तो मुझे लगा जमाना बदल चुका है। वी आर इन द 21st सेंचुरी और यंगस्टर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी

0: रिचुअल्स नहीं समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जो स्ट्रगल मैंने अपने टाइम पे देखी, मैं एजुकेशन में बी इंजीनियर हूँ, साथ में मैंने मैनेजमेंट किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, काम नौकरी भी कुछ साल की, लेकिन बाद में मेरा जो है मेरा मन भगवान में लग गया। मुझे हर पल एक प्रश्न सताता कि मैं यहाँ दुनिया में आई क्यों, पर्पस क्या है। मैं अपने आजू बाजू लोगों को देखती, लोग नौकरी पर जा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में बड़े दुखी हैं। किसी के रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, तो किसी के विवाह होकर के शादी नहीं संभाल पा रही है। बच्चे माँ बाप से प्यार ढूंढ रहे हैं, माँ बाप से प्यार नहीं मिल रहा है तो बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, बाहर प्यार नहीं मिल रहा तो ड्रग्स में ढूंढ रहे हैं। दुनिया को मैंने ऐसे देखा, अच्छा छोटे लोगों को ये तकलीफ है, बड़े लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक लोनलीनेस उनको सताया जा रहा है। जब अपने आसपास एक यंग उम्र में मैं ये देखने लगी, मेरे मन में ये ज्वलंत प्रश्न उठता कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। उस समय पर मेरे गुरुजनों का जो आशीर्वाद रहा, उस साधना का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, एक तो श्री विद्या सिखाई और दूसरा गीता। गीता ने मुझे बदल दिया, गीता ने मुझे जीवन का पर्पस समझाया, वाई आई एम आई हियर। और वो जो जीवन में मैंने प्रैक्टिस किया, जब मैं परिपक्वता पे आई, मैच्योर हो गई, तब मेरे गुरुजनों ने मुझे बोला कि अब इस ज्ञान को, घर घर गीता, घर घर श्री विद्या के मिशन, इसको तू अपना और इसको सभी को दे। पहले तो मैंने गुरुजनों से कहा कि इतनी कठिन चीज़ें हैं, समझाया नहीं जा सकेगा।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कहा हम तुझे विशेष ज्ञान देंगे, तू चिंता मत कर। तो पूरी श्री विद्या जो मुझे स्वयं 12 साल कम से कम लगे हैं, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और इतने सरल तरीके में बनाया कि आई एम वेरी प्राउड टू से आज मेरे स्टूडेंट बेस में दो दो साल में वो पूरी की पूरी विद्या सीख लेते हैं। मेरे स्टूडेंट बेस में 10 साल के बच्चे भी हैं और 70 साल के लोग भी हैं, अलग अलग परंपराओं से आए, आधा अधूरा सीख करके आए थे, लेकिन अब वो जब आते हैं तो मैंने एक ग्लोबल प्रोग्राम बनाया श्री विद्या सिखाने के लिए। वो श्री विद्या सीख करके वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, और धन्य बनाने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने कहा कि श्री विद्या देती क्या है, हमारे यहाँ कहते हैं श्री विद्या एक हाथ में भोग देती है और एक हाथ में मोक्ष देती है। भोग यानी मटेरियल ऑपुलेंस,
1: बिल्कुल,
0: और मोक्ष यानी लिबरेशन।
1: लिबरेशन।
0: अब मटेरियल ऑपुलेंस क्या है, केवल धन दौलत पैसा नहीं है। मेरे पिताजी सिखाते थे हमारे 8 लक्ष्मी की पूजा, जैसे हमने कहा ना दिवाली में 8 लक्ष्मी की पूजा होती है, तो लोग सोचते हैं लक्ष्मी केवल पैसा, पापा बोलते थे पैसा तो लास्ट की चीज़ है ना। लक्ष्मी यानी आपके पास अच्छे लोग हों, पहला आपका सबसे बड़ा धन है आपके कनेक्शंस, आपके बल,
1: स्थिरता,
0: हाँ ये होना चाहिए आपके जीवन में। जब आप काम करते हो दुनिया में, आप मीडिया पर्सन हो, चार लोग तारीफ करते हैं तो चार लोग नीचे भी गिराते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब नीचे गिराते हैं तो जब टूटते हो तो उस समय आप किसके पास जाते हो, क्या आपके पास कोई ऐसा है, चाहे फ़ोन पे हो चाहे कैसे भी हो, जिसके आप गले लग सकते हो, जिससे आप बैठ करके बातें कर सकते हो कि आज मेरे को ऐसा लोगों ने कहा, लेकिन वो तुम्हारा हिम्मत बंधा है। वो आपका परिवार का हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई तो हो सकता है। मेरे पिताजी कहते थे ये तुम्हारा पहला धन है, तुम लोगों को कमाओ, लोगों के प्रेम को कमाओ, ये तुम्हारा पहली लक्ष्मी है। उसके साथ साथ भोजन आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, आपके पास सब कुछ है, आप बीमार पड़े हुए हो, भोजन ले ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा हो लक्ष्मी का, लक्ष्मी तो नहीं खाओगे, धन तो नहीं खाओगे। तो पापा कहते थे तुम्हारा स्वास्थ्य, ये तीसरा, कि स्वास्थ्य अच्छा हो, पर्याप्त भोजन हो, आप कभी भूखे ना सोए, आपके आसपास वाले कभी भूखे ना सोए, तीन लक्ष्मी। आपके पास बोलने की क्षमता हो,
1: वाणी,
0: वाणी कि आप किसी को कुछ बोलें तो आप इंप्रेस कर पाए। लोग इंटरव्यू में जाते क्रैक नहीं कर पाते, सारा एजुकेशनल डिग्री फेल हो जाता है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, और किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन बोलने की ऐसी क्षमता है,
1: वाकपटु,
0: वाकपटु। तो पापा कहते थे ये तुम्हारी चौथी लक्ष्मी है। पापा कहते थे कि उसके बाद बाकी की लक्ष्मी आती है कि आपके पास गाड़ी हो, कहीं भी आप जा सकें, घूम सकें, है ना। या गाड़ी नहीं हो तो ऐसे कनेक्शन हो कि आपके लिए आ जाए, है ना। फिर पापा बोलते थे मन की शांति, ये सब होने के बाद पापा बोलते थे अब धन की आवश्यकता है। आपके पास अगर कनेक्शंस प्रॉपर है ना, आपके पास वाकपटुता है ना, और आपके पास अच्छे कपड़े वपड़े पहन रहे हैं ना, आप लोगों को इम्प्रेस कर पा रहे हैं ना, धन आपके पीछे फॉलो करेगा। ज्ञान आपके पास है ना, गुरु की कृपा आपके पास है ना, इस सब के साथ आपके पास आध्यात्मिक संपदा होनी चाहिए। और जिसके पास आध्यात्मिक संपदा है वो कभी दुनिया में कमी में रह नहीं सकता था। पापा मेरे गुरुदेव ये सिखाते थे कि जीवन को पूर्णता से जियो। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ, स्पिरिचुअलिटी मीन्स ब्रिंगिंग इट इनसाइड योर लाइफ।

0: आप जीवन को पूरी तरह से जियो, जो आपको चाहिए पाओ, और साथ साथ में आप पूर्णतया आध्यात्मिक रास्ते पर रहो। तो श्री विद्या और घर घर गीता, घर घर श्री विद्या के मिशन में यही है कि गीता ने मुझे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दिया, श्री विद्या ने मुझे भोग से भर दिया। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और भगवान की कृपा से बहुत सुंदर परिवार श्री विद्या ने मुझे दिया। मुझे, मैं देश विदेश हर जगह जाती हूँ। मेरा परिवार अब केवल 4 मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं रह गए, पूरे दुनिया में मेरा परिवार है। मैं जहाँ उतरती हूँ मुझे इतना प्रेम भगवान का मिलता है, मुझे हर रूप में। आज आप इतने प्रेम से मेरे सामने बैठे हो, मेरा दिल गदगद हो रहा है आपके एक एक शब्द सुन करके। मॉरिशस में जब आप इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। मुझे नहीं लगता मैं किसी अनजाने को मिली हूँ, मुझे लगता है मैं किसी अपने को मिली हूँ जिसको इस जीवन यात्रा में कभी पहले भी मिल चुकी थी।
1: ये मेरे लिए अहोभाग्य। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक आपाधापी जिंदगी जी रहे हैं, भागम भाग बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के अलग अलग चीज़ों को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी से हम लोग अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, एक दिशा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और श्री विद्या एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि किस प्रकार से हम अपने ज़िंदगी को, हम अपने जीवन को, हम अपनी जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। और इस वक्त कैलिफोर्निया से हमारी एक ऐसी गुरुमा आई हुई है जो हमको इस श्री विद्या की जो अवधारणा है उनके बारे में बता रही है। अब गुरुमा, आप हमें ये बताइए, ये जो श्री विद्या शब्द है मॉरिशस लोगों के लिए एक मतलब ये एक नई अवधारणा है, तो आपको कैसा लगता है कि वास्तव में मॉरिशस में इसको एक उपासना के रूप में, एक आध्यात्मिक दर्शन के रूप में, एक प्रणाली के रूप में हम श्री विद्या को अपना सकते हैं?
0: देखो, ऑलरेडी कर रहा है मॉरिशस इस चीज़ को, लोगों को पता नहीं है। अभी आपने कहा दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी ही श्री हैं। यहाँ पर 3,000 काली मंदिर है, मैंने ऐसा सुना, वो काली ही श्री हैं। ये लोगों को पता नहीं है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी और जो मैं ज्ञान देना चाहती हूँ मॉरिशस के लोगों को। दुर्गा माँ की पूजा तो हर जगह हो रही है ना। दुर्गा माँ की पूजा होती है दुर्गा सप्तशती से, और दुर्गा माँ के सप्तशती में 3 चरित्र आते हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ठीक है ना। और जब आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो कहते हैं ये जो महाकाली का स्वरूप है, माँ सरस्वती का स्वरूप है, महालक्ष्मी का स्वरूप है, ये श्री का स्वरूप है, इसको कमलात्मिका भी कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाला हर व्यक्ति श्री की ही पूजा कर रहा है। बिना श्री सप्तशती तो कोई भगवान रहते ही नहीं। तो श्री विद्या यानी उस श्री को समझना जो अलग अलग रूपों में इस दुनिया में है। वो श्री लक्ष्मी के रूप में पूजी रहे, वो श्री दुर्गा के रूप में पूजी रहे, वो श्री काली के रूप में पूजी रहे, वो श्री महामारी अम्मन के रूप में पूजी रहे, है ना। तो श्री यानी इस दुनिया की संपदा, इस दुनिया का वैभव, विष्णु की पत्नी वो श्री है, शिव की पत्नी भी श्री है।
1: मतलब जो 3 रूप है जो आपने अभी बताया है, अगर उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, इसी को रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहते हैं, और इसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं।
0: अभी उदय, आई एम सो हैप्पी, आपने कितने सरल शब्दों में इनको लिया। ओ गॉड, परफेक्ट, यू एक्सप्लेन इट सो परफेक्टली। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो है वो देवी का स्वरूप है, ठीक है ना। ये पूरी दुनिया इन्हीं से चल रही है। जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपने बताया, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई वो रजोगुण से ही बनाई,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ब्रह्मा जी को बनाने के लिए उनकी माता कौन है? उनकी माँ वो श्री है। शिव जी जब ये संसार खत्म होता है तो रुद्र का काम करते, रुद्रलीला करते हैं वो, है ना। कोई चीज खराब होगी, रुद्रलीला होगी, वो रुद्रलीला को करने की शक्ति कौन देता है? श्री देती है। विष्णु जी दुनिया का पालन कर रहे हैं, उसको शक्ति कौन दे रहा है? श्री दे रहे हैं। तो इसी श्री का एक और नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी, और दुनिया में फेमस है ललिता सहस्त्र नाम, आप YouTube पे जाएंगे मिल जाएगा आपको। तो इनका एक नाम तो मैंने काली बताया, एक नाम दुर्गा बताया, एक नाम लक्ष्मी बताई, और जो मेन नाम है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है ना, उस रूप से ये जानी जाती है। यही है शक्ति जिन्होंने सबको दिया। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो तो पहली जो चरित्र आता है उसमें लक्ष्मी जी का स्वरूप है, एक्चुअली वो 18 भुजाओं वाली लक्ष्मी जी है, और कहते हैं कि विष्णु जी सो रहे हैं, है ना। और विष्णु जी सो रहे हैं तो विष्णु जी को सुलाया किसने? वो जो तमस गुण है ना, तमोगुण, वो तामसी शक्ति वो देवी है।

0: कान से तो मधु कैटम नाम करके निकलते हैं, वो जो तामसिक गुण निकल रहे हैं उनका वध करने के लिए जो शक्ति जो दे रही है वो कौन है? वो दुर्गा है, वही श्री। तो इनकी विद्या जो समझता है, इनका नॉलेज जो जानता है, वही श्री विद्या है। समझ में आया? सत्वगुण रजगुण तमोगुण में प्रकृति है, वो मूल प्रकृति जो आप देख रहे हो। मॉरिशस में आई समुद्र जो है, मेरे लिए विष्णु जी का स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान है, मैंने पहले नमस्कार किया। तो आप तो रोज ही लक्ष्मी जी के श्री की गोद में खेल रहे हो आप
1: जी।
0: यहाँ के पहाड़ है ना, यहाँ पर काले काले वोल्कैनिक रॉक्स हैं,
1: बिल्कुल
0: वो काली माँ है, रुद्रलीला हो रही है कंटिन्यूस। कौन है? आप तो श्री के गोद में खेल रहे हो, मूल प्रकृति पेड़ों को देख रहे हो आप, लीला इतनी सुंदर हो रही, जहां देखो सुंदरता सुंदरता सुंदरता, वो त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य रूप में पूरे मॉरिशस में छाई हुई है। तो श्री को आप दर्शन कर ही रहे हो रोज। हाँ, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरे गुरुजनों की वाणी के माध्यम से मैंने केवल आपको वो दर्शन कराया, इसी समय आपको श्री विद्या का ज्ञान मिल गया। ये श्री विद्या।
1: मैं अपने आप को एक अलग मतलब दुनिया में विचरित होने महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो श्री विद्या है, हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसको आत्मसात कर रहे हैं, खुद हमें पता नहीं है। गुरुमा, आज की दुनिया में लोग तनाव, संबंधों की समस्याओं, वित्तीय दबाव, पारिवारिक उलझन, आंतरिक शक्ति में कमी, इन सभी चीज़ों से जूझ रही है। मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला मुझे, मुझे मिलना चाहिए वाली जो भूख है, मैं क्यों नहीं हूँ इसमें। तो आपको लगता है श्री विद्या की शिक्षाएं और साधनाएं एक साधारण व्यक्ति को आधुनिक जीवन की इन चुनौतियों से निपटने में कैसी मदद कर सकती हैं?
0: बिल्कुल मदद करता है। लेकिन एक चीज़ होती है, ये जो प्रश्न है ये बहुत सभी की, पूरे वर्ल्ड में ये प्रश्न, इसके लिए एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है, सत्संग, गुरु के साथ जुड़ना। इसलिए मैं श्री विद्या के साथ साथ, श्री विद्या तो सिखाती हूँ, उसके साथ साथ गीता पर भी मैं बहुत फोकस करती हूँ। हम लोग बहुत लकी हैं कि भगवान 5000 साल पहले स्वयं आए कृष्ण बन करके, और उन्होंने हमें ज्ञान दिया जीवन जीने का। लेकिन हम इस रैट रेस में ऐसे भागने लगे कि उस ज्ञान से वंचित हो गए, हमने अपने आप को काट दिया। हमें पता ही नहीं कि हम आए क्यों हैं, जी क्यों रहे हैं, करने वाले क्या हैं, और ये रैट रेस में हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। क्या इससे निकलने का मार्ग है? 100% है। श्री विद्या, जिनको मैंने श्री कहा, उनकी उपासना भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। श्री कृष्ण का नाम है श्री। श्री कृष्ण एक राधा रानी की पूजा करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में उनको श्री जी कहते हैं। सीता मैया रामचंद्र की जो पत्नी है उनको भी श्री ही कहते हैं। समझ में आया ना? तो श्री के बिना कुछ है नहीं। जब हम पूरी गीता पढ़ते हैं, गीता के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां धनुर्धर अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन यानी हमारे ऐसे लोग फाइटर स्पिरिट वाले, हम आकर के रोज फाइट कर रहे हैं ना, जहां धनुर्धर अर्जुन है और जहां भगवान कृष्ण है, मीन्स हमारी फाइटर स्पिरिट के साथ हमारी स्पिरिचुअल स्पिरिट, जहां ये दोनों है वहां पर श्री होती ही है, साथ में विजय होती ही है, और साथ में नीति, मॉरल करेक्टर वहां पर बहुत स्ट्रांग होता है, और भूति ऑपुलेंस वहां पर बहुत स्ट्रांग होता है। भगवान कहते हैं ये मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है। तो आपने कहा कि क्या ये पारिवारिक चीजों को बदलेगा? 100% श्री विद्या की साधना करने वाला जब वो मंत्रों का जाप करता है, भगवती आकर के वाणी पर बैठती है, भगवती आकर के मन में बैठती है। जो आपकी तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि है, जो रैटरेस है ना, मुझे ये पाना है, ये रजोगुणी बुद्धि होती है, और रजोगुणी बुद्धि का तमोगुण से बहुत जुड़ाव है। रैटरेस में भाग रहे हो, परेशान हो रहे, कुछ नहीं मिल रहा, परेशान हो के रात को फिर कुछ ड्रिंक्स ही दे दे, शांति मुझे मिल जाए, है ना। अब ड्रिंक्स भी ले लेकर के शांति नहीं मिल रही, ड्रग्स ही दे दे, शांति मुझे मिल जाए। ये तमोगुणी है। तो रजोगुणी तमोगुणी साथ चलते हैं। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेने स्टोरी करते हैं ना, कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मेरे अंदर एक शक्ति है, मेरे अंदर उस भगवती की शक्ति है। गुरु आकर के जीवन में आपको शक्ति जगाते हैं, मंत्र देते हैं, उस मंत्र करने से मन शांत होता है, अंदर की शक्ति जागती है, शक्ति जागते जागते ज्ञान का वर्धन होता है, और जैसे ही ज्ञान का वर्धन होगा आप शांत हो जाओगे, आप रैट रेस से पहले बाहर आ जाओगे। आपको इतना पता चल जाएगा कि जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलना ही है, जो आपके हिस्से का नहीं है नहीं मिलना है। आप इस समय जो काम करोगे इसका फल आपको भोगना ही है, लॉ ऑफ नेचर। आप आज अगर अच्छे काम करोगे, उस अच्छे कर्म करने से आपको अच्छे फल भविष्य मिलने वाले हैं। तो रोज सुबह उठो, क्या करो?

0: भगवान का नाम लो, देवी का नाम लो, मैं देवी का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शिव का अंश हूँ, मैं कोई साधारण एग्जिस्टेंस नहीं हूँ, मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवी हूँ, मैं डिवाइन हूँ। इस भावना से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सुबह से भगवान को याद करते हुए, सूर्य भगवान रोज उठते हैं, उनको याद कीजिए कि सूर्य भगवान आप मेरे जीवन को प्रशस्त कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसे भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को अच्छे से करिए। कर्म तीन प्रकार से होते हैं, मन से, फिर वाणी से, फिर आपके हाथों से, क्रियाओं से। तो मन के कर्म को अच्छा रखिए, वाणी के कर्म को अच्छा रखिए, सपने में भी किसी को दोष या दुख मत दीजिए, ठीक है। और फिर हाथ पैर से तो अच्छे कर्म करिए, तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा।
1: आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने जिंदगी में अवश्य उतारूंगा। और जितने सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अब भी मुझे लगता है जिस प्रकार से गुरु माँ बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही सरल भाषा में बात कर रही हैं, बहुत ही सदी पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये कथन कहा था, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन, वचन और कर्म इन तीनों को लेकर के हार्मोनियसली सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो निरंतर तरीके से आप अपने जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम में।

0: जी बिल्कुल, आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं, और हमारा जो विषय है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है श्री विद्या के बारे में। और इस वक्त कैलिफोर्निया से एक ऐसी गुरु माँ आई हुई है जो भक्ति मार्ग को सशक्त करने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा को और ज़्यादा सुलभ करने के लिए हम मॉरिशन वासियों को प्रेरित कर रही हैं, एक दिशा निर्देशन कर रही हैं, और साथ ही साथ हमें एक हमारे जो उद्देश्य है जीवन के उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो गुरुमा, फिर से आपका स्वागत हम करते हैं। अब गुरुमा, आप मॉरिशस किस उद्देश्य से आई हैं और यहाँ पर उसका उसका व्यापक लक्ष्य क्या है, और आप श्री विद्या के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य तो कर रही हैं, लेकिन इस अभियान की के पीछे आपकी दृष्टि क्या है? क्या आप मॉरिशस में क्या स्थापित या फिर कुछ जागरूकता अभियान करना चाहेंगे?
1: मेरा इस समय जो लक्ष्य है एक ही है, घर घर गीता घर घर श्री विद्या। इस लक्ष्य से मैं मॉरिशस आई हूँ। मैं पूरे दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ। मॉरिशस में आकर के यहाँ के जो लोग हैं, मुझे इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ अध्यात्म का बीज है। मैंने देखा, जितने भी लोगों से मिली, मैंने देखा कि इनके पूर्वज यहाँ पर आए हैं और इन्होंने बहुत प्रयास किया अपने उस एंशियंट ट्रेडिशन को जो वो भारत से लेकर के आए, चाहे वो तमिल हो, चाहे आंध्रा से हो, चाहे मराठी हो। मैंने देखा कि उस एंशियंट ट्रेडिशन को ये आज भी अपने मंदिरों में संभाल रहे हैं। और मैंने दूसरी एक और एक बात नोटिस करी मॉरिशस में, जो मैं बात करते करते समझ में आया कि यंगर जनरेशन उस एंशियंट रूट से थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे डिवोर्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, चाहे ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरा जो जो लक्ष्य घर घर गीता घर घर श्री विद्या तो है ही, लेकिन साथ में मुझे ये है कि ये जो हमारा जो एंशियंट जो धर्म है, जिसने हम सबको बांध के रखा, हमारे पूर्वजों ने जो इसको बना करके रखा है, यंगर जनरेशन को मैं इससे जोड़ूं, रिकनेक्ट देम विद द एंशियंट रूट्स विद द एंशियंट विजडम। हमारे विजडम, यदि आप देखो, यदि आप हमारे भगवानों को देखो, आप शिव जी को देख लो, शिव जी के परिवार को देख लो, शिव जी के परिवार में शिव जी से बढ़कर के धर्म का ज्ञान देने वाले कोई नहीं। सारा धर्म का ज्ञान शिव जी की और उनकी पत्नी की वार्ता से निकलती है, ठीक है ना, आगम निगम का ध्यान का जो ज्ञान है। शिव जी के परिवार को यदि आप देखो, तो शिव जी अवघड़ कोई नौकरी वोकरी नहीं करते, है ना, स्मशान में बड़े धुनी रमाते हैं, राम राम राम करते हैं। उनकी पत्नी को देखो, साक्षात श्री, सारे दुनिया की संपदा ब्रह्मांडों की मालकिन है, ठीक है। उनके पुत्र को देखो, एक गणेश भारी भरकम, और उनके दूसरे पुत्र कार्तिक वेरी एक्टिव सेना में, है ना। अब उनके घर के परिवार के बाकी के मेम्बर्स को देखो, शिव जी ने क्या लपेटा है, सांप,
0: सांप
1: गले में क्या है, विष,
0: हलाहल।
1: इतना हलाहल होते हुए भी भगवान शिव कैसे हैं,
0: शांत।
1: हम यदि शिव की उपासना करते हैं, हमें कैसा होना चाहिए,
0: शांत।
1: और अगर हम शिव की उपासना करके अगर शांत नहीं हो रहे हैं, तो जरूर हमारे उपासना में या हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, उनकी पत्नी तेज तर्रार, दस दस हाथ में शस्त्र लेकर खड़ी है, और ये कुछ कमाते धमाते नहीं है, दिन रात गणेश जी को खाना खिलाना है, तो पत्नी को कितना काम करना है। ऐसी तेज तरार पत्नी है, फिर भी इन दोनों में जो प्रेम है, इनकी जो लव स्टोरी है दुनिया में, वैसी लव स्टोरी नहीं हो सकती कि जब सती सती ने प्राण त्याग दिए थे केवल उनके पति का डिसरेस्पेक्ट हो गया था इसके लिए। उन्होंने क्या आदर्श रखा, और भगवान शिव ने भी वही आदर्श रखा कि मैं इनके अंदर किसी को अपनाऊंगा नहीं। कैसा प्रेम उस परिवार के अंदर है। जब हम अपने भगवानों को देखें तो उस परिवार के प्रेम को देखते हैं। हमको अगर ये प्रेम करने नहीं आ रहा है, हम रात दिन भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, दुनिया भर के रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन यदि अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम नहीं कर पा रहे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में अभी कमी है, हम अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे। तो इनके गले में सर्प है और ये हलाहल में भी शांति से हैं, इनके हाथ में 10 शस्त्र हैं, फिर भी अपने शस्त्रों को कंट्रोल करके रखी हुई है, और ये इनके जो कार्तिक हैं वो बैठते हैं मोर के ऊपर, मोर वो सर्प को देखता रहता है, बोलता है अभी मैं तुझे अटैक करने वाला हूँ, है ना, जंगल का राजा नहीं था, अभी अटैक करने वाला हूँ।

0: सर्प गणेश जी को चूहा को देखता है, अभी अटक करूंगा अभी अटक करूंगा अभी अटक करूंगा, और इनका नंदी बैल है,
1: नंदी
0: शेर नंदी को देखता है, नंदी वहां से तू मुझे क्या दिखाएगा, मेरा मेरा देख सिंह देख, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अब ये घर का जो माहौल है, सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लग रहा है ना, है ना, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये लोग कितनी पीसफुल फैमिली है, ये एक दूसरे को कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। गणेश जी ने तो आदर्श दिया कि माँ बाप सर्वोपरि है, गणेश जी में और उसका उनके भाई में कॉम्पिटिशन लगे, हर घर में होता है ये, लेकिन फिर भी माँ बाप को तो छोड़ा नहीं, समझ में आया। तो जब भी हमारे भगवानों को देखो, मैं शिव जी का आदर्श परिवार लेकर के आई हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें श्री विद्या दी है, ये हमारे गुरु है, इनका आदर्श परिवार है, ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो हमारे हिंदुओं में जो जो सनातन धर्म है, हमको यही सिखाया गया कि आपको जो परिवार दिया गया इनके साथ आपका ऋणानुबंध है, आप भगवान को अपने जीवन में उतारो, शिव की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करो, देवी की पूजा करो, और अपने घर की जो पत्नी है, अपने घर की जो स्त्री है, या घर की स्त्री छोड़ दो, सारी स्त्रियाँ ये देवी का स्वरूप है, ये स्त्री है, आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी इस देवी का स्वरूप है। जब व्यक्ति इस प्रकार से उनको देखता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, तो वो स्त्रियाँ नेचुरली पुरुष को रिस्पेक्ट देती है। अगर हम एक दूसरे को प्रेम से देखने लगेंगे, तो जो जीवन में जो आज के ज़माने में जो हो रहा है कि हमें प्रेम ही नहीं मिले, हमें प्रेम नहीं मिल रहा, डिवोर्स हो रहा है, ये नहीं होगा, ये रुक जाएगा। बच्चे माँ बाप को आदर तो दे रहे हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों के दुख दर्द को नहीं समझते कि बच्चे भी ट्रॉमा से गुजरते हैं, है ना। माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि माँ बाप धन के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें लगता है हमने धन कमा लिया, हमने बच्चे को धन दे दिया तो बच्चे का काम हो गया। माँ बाप जिस गरीबी से जूझ रहे थे वो उसको हटाना चाह रहे हैं, और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं एक्सपेक्टेशन का, ऐसा होना नहीं चाहिए। माँ बाप अपने सपनों को फुलफिल करें, बच्चे अपने सपनों को फुलफिल करें, तो बच्चों के साथ वो प्रेम का संबंध, ये हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे प्रेम करें। हम राजा राम का यदि उदाहरण लें, तो उनके वहाँ राम जी को घर छोड़ने का कारण ही क्या था, कि माँ ने वो एक एक्सपेक्टेशन रखा ना कि ये राजपाट मेरे दूसरे बच्चे को मिलना चाहिए, उसी की वजह से परिवार में बिखरा हुआ। लेकिन जब परिवार में बिखरा हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, सभी के सब दुखी थे, उस परिवार में अंत तक सुख नहीं मिला। तो परिवार के मुखिया को ये एक लेसन है कि मुझे मेरे परिवार को डिवाइड होने देना नहीं है। ये सारे लेसन हमको हमारे पुराणिक कथाओं में मिलती है, लेकिन हम उन कथाओं को समझ नहीं पा रहे, और उसी वजह से हम उनके मॉरल वैल्यूज को ले नहीं पा रहे। हमारे रूट्स बड़े एंशंट हैं, लेकिन उसके विजडम को हम समझ नहीं पा रहे। तो जब मैं मॉरिशस में आई हूँ, हालांकि मैं मैसेज तो ये लेके आई थी, लेकिन अब मेरा ऐसा है कि नहीं, मैं यहाँ के लोगों को उनके एंशंट रूट से जोड़ करके, उसके असली स्वरूप को बता करके, मैं परिवारों को रिकनेक्ट करवाना चाहती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति का जागरण करो और अपने जीवन के मार्ग को बदलो, सनातन धर्म को पुनः स्थापना करके इसको एक विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनाओ। ये मेरा लक्ष्य इस समय मॉरिशस में आया हुआ है।
1: जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर श्री विद्या की को लेकर की जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है गुरु माँ की माध्यम से, अपने आप में बहुत ही सफल होने वाला है, हम यही कामना करते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग एक इंतज़ार में हुए हैं, इंतज़ार रोटी का, रोटी इंतज़ार गेहूँ का, गेहूँ इंतज़ार कर रहे हैं बीज का, बीज इंतज़ार कर रहे हैं मिट्टी का, मिट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं बादल का। हम इंतज़ार करते करते उस भूख को मिटाने के लिए उस आध्यात्मिक यात्रा को भूल गए हैं, जो हमें फिर से लौटना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जो भूख है अपने आप में मिटेगी। श्री विद्या की अवधारणा यही है, उस भूख को मिटाने के लिए उस आध्यात्मिक यात्रा का चयन करें और उससे गुजर करके जाइए। क्योंकि पता क्या होता है गुरुमा, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में एक धुंधलापन महसूस होता है, खासकर आध्यात्मिक मार्ग में, और हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो जो धुंधलापन है वो अपने आप में मिटने लगेगा। आगे बढ़िए, धुंधलापन और मिटता जाएगा, और आगे बढ़िए, धुंधलापन और मिटता जाएगा, तब जा कर के हमें वो क्लैरिटी मिलेगी। इसीलिए आज बहुत सारे लोग कतराते हैं, वे लोग, उन लोगों में एक झिझक है, वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही कठिन है। अब आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस में आप यहाँ पर खास कर

0: क्यूपिप के स्वस्तिका मंदिर में बहुत ही विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन भाग ले सकता है, आप वहाँ पर क्या सिखाएंगे, श्री विद्या के पूरे जो तरह के जो खासकर जो अनजान है, मुझे अब सीखने का मौका मिल रहा है, तो उन लोगों को सिखाने के लिए आप किस तरह के जो अनुभव है उसके बारे में आप उन लोगों को आप साझा करने वाले हैं।
1: तो बहुत अच्छा आपने बताया, ये बात आपने जो बताई कि लोग नहीं जाना चाहते हैं या धुंधलापन है, हमारे शास्त्रों में एक बात बताई गई है, ये धुंधलापन मिटाने वाला एक ही होता है गुरु। अज्ञानति मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलतम ये न तस्मय श्री गुरुवे नमः। कि मैं अज्ञान के अंधकार में खोया हुआ हूँ, है ना, अज्ञान का घोर तिमिर छाया हुआ है, लेकिन इस अज्ञान के घोर तिमिर में हे गुरुदेव आप प्रकट हुए हैं प्रकाश रूपी टॉर्च लेकर के, और आपने मेरी आंखों को खोल दिया है, इसलिए हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझे आपने इस धुंधले रास्ते में रोशनी दिखाई है। मैं, आप मुझे गुरु माँ कहते हैं, गुरु मैं अपने गुरुओं को लेकर के यहाँ पर आई हूँ, मेरे हृदय में बैठे हैं, उनके मैसेज को लेकर के आई हूँ, और स्वस्तिका मंदिर ने मुझे वो स्थान दिया जहाँ से मैं इस मैसेज का प्रसार कर सकूँ। मैं इतना ही लोगों से कहना चाहती हूँ कि गुरु तो मेरे गुरु हैं लेकिन मैं माँ हूँ, आप मुझे गुरु जैसे मत देखो, आप अपनी माँ को मिलने आ रहे हो, आप ये रास्ता कठिन ही नहीं है, जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़ लेता है, माँ का हाथ पकड़ लेता है, माँ छोटे बच्चे को गोद में उठा करके दुनिया घुमा करके लेके आ जाती, आप उस भावना से मेरे साथ आकर के जुड़े, मैं आपको उस श्री माँ से, उस श्री विद्या से, उस श्री माता से जुड़ना चाहती हूँ। गुरु का पद बड़ा ऊंचा होता है लेकिन माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो सारे बांधों को तोड़ देता है। मैं माँ स्वरूप में मॉरिशस में आई हूँ, तो स्वस्तिका में जो भी सीखना चाहते हो, देयर इज़ नो एज बैरियर, आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे किंडरगार्टन जैसे आपका एनरोलमेंट, आप ऐसे आना, आपको मैं माँ से मिलाना चाहती हूँ, ठीक है, और हर एज के लोग आ सकते हैं। सरल तरीके से श्री विद्या क्या है मैं बताऊँगी, और ये श्री विद्या का जो ऊंचा जो लेवल है, जहाँ पर श्रीयंत्र का जो मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, इसको हम कैसे पूजा कर सकते हैं, इसमें श्रीयंत्र में कम से कम 360 देवी देवता है, तो कहाँ कहाँ बैठे हैं, आप छोटी सी जैसी श्रीयंत्र है ना, अब आप खोलो, अभी मैं आपको ऑडियंस को बता देती हूँ, स्वस्तिका आ गए तो बहुत अच्छे नहीं आ पाए तो भी मौका छोड़ती नहीं हूँ, जैसे यहाँ पर बैठे हुए ना, यहाँ पर सिद्धियाँ बैठी होती, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति भुक्ति मुक्ति, ये सिद्धियाँ बैठी हैं, हमको यही तो चाहिए, छोटी छोटी सिद्धियाँ, यू नो सिंपल, जैसे मैं कल मॉरिशस उतरी और हम जहाँ ठहरे थे तो वो स्थान मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो सवेरे से मेरे मन था कि मुझे ना एकदम बीच पर रहना है, मतलब बीच वॉकिंग, अब सवेरे से मेरे दिमाग में चढ़ चुका है बीच पर जाना, अब मुझे मॉरिशस का इतना आता पता नहीं था, हम लोग यहाँ पर बोवेलॉन मॉल है शायद
0: जी, जी, जी,
1: तो हम लोग वहाँ पर खाना खाने चले गए, खाना खाने बैठे तो उस मॉल के जो ओनर थे उनको हमने कहा कि हमको एक अकोमोडेशन अच्छा दिखाओ, तो वहाँ पर चलते फिरते जिस होटल में मैं भी रही हूँ ब्लू रूफ करके है, उनके ओनर वहाँ पर चलते फिरते आ गए, मैं अणिमा सिद्दीक आपको एग्जांपल बता रही हूँ, उनको मेरी बारे में पता चला, उन्होंने बोला आप हमारे होटल में आके रह लीजिए, जब मैं होटल गई, होटल लाइक बीच के ऊपर है, मैं सवेरे से सोच रही हूँ मुझे बीच पर होटल चाहिए, अब देखो ये अणिमा सिद्दीक है, समझ में आया ना, अब महिमा सिद्दीक है, तो मैं मॉरिशस में आई हूँ, मैं तो नहीं जानती थी क्या हो रहा है यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर बैठ करके भगवान की महिमा गा रही हूँ ना, वो महिमा से किसकी महिमा हो रही है, इस शरीर की महिमा हो रही है, महिमा सिद्धि गरिमा सिद्धि, हर ये छोटी छोटी सिद्धि जो आप सोचते हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बड़ी, ये सब यहाँ पर बैठती है, मैंने 14 साल की उम्र से इनकी पूजा की है, ये सिद्धियाँ मेरे आगे पीछे दौड़ती है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर और भी शक्तियाँ बैठती हैं, योगिनियाँ बैठती हैं, और फिर ये बिंदु पर जब आप आते हो यहाँ पर शिव और शक्ति कामेश्वर कामेश्वरी बैठती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सृष्टि का विस्तार होता है, यहाँ से यहाँ लेकर के सृष्टि जाती है, ये जो स्थान है इसको हम मणिद्वीप कहते हैं, हम सब यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ आकर के अपने असली पता को भूल गए, तो जो लोग स्वस्तिका में आएंगे उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस, आप भगवान के साथ जुड़ने आए हो, तुम्हारा क्या स्थान है, तुम कौन हो ये बताऊँगी, तो सरल तरीके से कहानी के माध्यम से, तो स्वस्तिका में कल है प्रोग्राम 5:30 से 8:30 बजे, फिर सैटरडे को, फिर संडे को है 9:00 बजे से, और उसके बाद हम लोग ने एक और प्रोग्राम रखा है 4 तारीख को, जहाँ पर मैं यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली इनवाइट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये कठिन मार्ग नहीं है, आप जब जुड़ोगे हमारे एंशियंट रूट से ना, आप देखोगे इसमें बहुत आनंद है, और आपके जीवन को ये बहुत प्रशस्त करेगा, आपको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाएगा, आपके जीवन में सौंदर्य और आनंद ये भर देगा, गीता के मैसेज को, तो एक कॉम्पिटिशन भी अरेंज कराया गया है, और साथ में गीता के ऊपर सेमिनार भी होंगे, गीता के ऊपर चर्चा भी होगी।

0: तो मैं परिवारों को इन्वाइट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को खास करके लेकर के आइए और इसको साथ में बैठ करके सुनिए। एक माँ से आप मिलेंगे, माँ से हमारी पुरानी कहानियाँ सुनते सुनते आप भगवान से जुड़ेंगे। बस मैं आपको आपका असली परिचय कराना चाहती हूँ, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप दैवी हो, आप शिव के अंश हो, आप देवी के अंश हो, यही बात मैं मॉरिशस वालों को बताना चाहती हूँ।
1: गुरु माँ, अब हम अंतिम पड़ाव में पहुँच गए हैं, जाते जाते जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो आप दुख अनुभव कर रहे हैं, उस दुख को आप इतने सीरियसली लो मत। आपके पास वो ताकत है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर शक्ति का स्वरूप है। मैं मॉरिशस आई, छोटे छोटे ऐसे स्टोन्स हैं यहाँ पर, तो मैं मॉरिशस में बहुत वोल्केनिक स्टोन्स है, मैंने ऐसे ये स्टोन पहन के रखा हुआ है, तो इन स्टोन्स में इतने चार्जिंग है, समझ में आया? तो मैं मॉरिशस वालों को बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ बैठे हो, आप एक शक्ति का पुंज हो, आप अपने आप को श्री विद्या सीख करके उस शक्ति को अपने घर में लेकर के जा सकते हो, उस शक्ति को चार्ज कर सकते हो। और साथ में कुछ कुछ स्टोन्स हैं, इनको चार्जिंग के मेथड आप सीख लो, अपने जीवन को आप चार्ज होकर के जियो। जैसे रोज बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे अपने जीवन को भगवान से जुड़ करके चार्ज होकर के जियो। गीता के ज्ञान को पाओ, डू नॉट जस्ट इनहेरिट द रिचुअल्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, इनहेरिट देयर विजडम। डू कम, डू मीट, डू लिसन, उस विस्टम को अपने अंदर जगाओ, अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल डालो, जीवन में सुख को अनुभव करो, पूर्णता से जीवन जियो, भोग भी पूरी तरह से लो और साथ में मोक्ष का भी रास्ता को प्रशस्त करो। यही मॉरिशस वालों को मैं कहना चाहती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ कि आज आप यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही दूर होकर के यहाँ पर आकर के आप अपने जो संतान यहाँ के हैं, यहाँ के भूमि के जो बच्चे हैं, उनको श्री विद्या के माध्यम से आध्यात्मिक का जो ज्ञान है आप दे रहे हैं। इसके लिए MBC की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञ हैं कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर आकर के अपने जितने सारे जो ज्ञान है उसका साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत अच्छा लगा अभी दे, थैंक यू टू MBC फॉर इन्वाइटिंग मी और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ से मैं इस ज्ञान को मैं लोगों तक बांट पाई। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
1: जी हाँ बिल्कुल, आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने से पहले इस बात को गौर से सुनना कि हम दूसरों पर ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, हम भूल गए हैं खुद पर भी हमें उम्मीद रखना चाहिए। हो सकता है सब लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर खुद से खिलाफ हो जाएंगे तो काम नहीं होगा। खुद पर विश्वास रखिए, इस विश्वास को दृढ़ बनाइए और श्री विद्या का पूरा आनंद उठाइए। अगर आप स्वस्तिका मंदिर जाएंगे तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और प्रणाम।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। तेज और ठंड हवाएं आज सुबह से मॉरिशस के कई इलाकों में ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका कारण एक जोरदार एंटीसाइक्लोन है जो मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाया जा रहा है। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तटों तक भी पहुंच सकती हैं, खासकर दक्षिण और पश्चिम में। आम जनता से सावधानी बरतने की मांग की जाती है और दूर समंदर और दक्षिण तथा पश्चिमी लगूनों और तटों पर न जाने की सलाह दी जा रही है। आज सुबह

0: ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों पर आधारित फोरम का आयोजन किया गया। गणराज्य के राष्ट्रपति और कला एवं संस्कृति मंत्री वहां उपस्थित रहे। देश की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण और मरम्मत के लिए कई कदमों का ऐलान किया गया। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में भाग लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजबाली की मौजूदगी में ये परेड लगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्ष रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। विदेशी समाचारों में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं जो पर्यटक के रूप में वहां घूमने गए थे या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया जीजी, नमस्कार।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब जय सियाराम जय जय मॉरिशस। स्वागत है आप सबों का गीत गाथा देश की इस प्रोग्राम में। आज की तिथि 29 अगस्त और कल है 30 अगस्त, ठीक है ना। और हर साल के 30 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बीचेस डे। उस तारीख को, उस तिथि को जब हम अपने समुद्र तटों पर विचार करते हैं, जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो अच्छा है या कुछ ठीक नहीं है। साथ ही साथ इस तिथि पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे समुद्र तटों का भविष्य क्या है। सरकार अपनी तरफ से अपना काम करता है, अथॉरिटीज अपना काम करते हैं, लेकिन क्या हम भी अपनी ओर से अपने स्तर पर अपने लेवल पर अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं या नहीं। सो, इसी संदर्भ में आज हम मॉरिशस के समुद्र तटों के बारे में बात करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप हमें फ़ोन करके जवाब दें। उन क्या सौंदर्य क्या तुम्हें सुसन जी, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि मॉरिशस में कितने ऑफिशियल पब्लिक बीचेस हैं। मॉरिशस में कितने ऑफिशियल पब्लिक बीचेस हैं, आपका जवाब 4028070 पर।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

हर साल के 30 अगस्त को मनाया जाता है विश्व समुद्र तट दिवस वर्ल्ड बीचेस डे और पब्लिक बीचेस हम सबों के लिए सबसे आसान सबसे एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट है आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए पब्लिक बीचेस घोषित किए गए हैं और हमने सवाल किया कि मॉरीशस में कितने पब्लिक ऑफिशियली कितने पब्लिक बीचेस पाए जाते हैं और सही संख्या है 126 120 जिनमें से 37 इन द नॉर्थ 42 इन द साउथ 28 इन द वेस्ट and 20 in the east. In सभी public beaches, in सभी समुद्र तटों के बदौलत आम आदमी और पर्यटकों को भी इन

उपयोग करने की सुविधा मिलती है विदाउट नीडिंग रिजोर्ट एक्सेस। सो सही संख्या 126। आपको याद है फिल्म कहो ना प्यार है का ये सीक्वेंस जहां पर ऋतिक रोशन और अमिषा पटेल एक बीच पर अपने आप को पाते हैं। थोड़ी देर में हमारा दूसरा प्रश्न।

सो डियर लिसनर्स, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में ज़्यादातर लोग कौन सा बीच जाते हैं। अगर आप वेस्ट में रहते हैं, मान लीजिए आप कटबोन रहते हैं या पाल्मा रहते हैं, तो अधिकतर लोग एक बीच के बारे में हमेशा सोचते हैं। हालांकि अन्य लोग अन्य बीचेस होते हैं, बट दे यूजली रिजोर्ट टू वन बीच। अब अगर आप पूर्व में रहते हैं तो वहाँ पर से भी फेवरेट बीच एक है। फ़ोन करके बताया उनका सौ दुखा तो वह सुसंजीस आपका फेवरेट बीच।

0: 4:22। चले हम मिलते हैं इनसे। हेलो,
1: जय सियाराम भाई जी।
0: जय सियाराम माला जी। आप रहते हैं कैटरबोन?
1: कैटरबोन जी।
0: सो कैटरबोन वाले जब छुट्टी के दिन आते हैं या संडे आते हैं तो किस बीच के बारे में सोचते हैं?
1: जी मैं ज्यादातर फीका पार्क जाती हैं और पर जब समर का मौसम आता है तो हम स्वाजी, सैफेली, बेलमोर चारों ओर मुशर्रफ के यहाँ घूमती है।
0: लेकिन अधिकतर जो प्लेन विलियम्स के लोग रहते हैं वे फीका फ्लाक ही के बारे में सोचते हैं।
1: फीका फ्लाक जी हाँ।
0: और वहाँ का वातावरण आपको कैसा लगता है, खासकर वहाँ का जो हाँ जो सेटिंग सन है, यानी कि डूबते हुए सूरज को फीका फ्लाक से देखना कुछ अलग हो।
1: बहुत सुंदर
0: और
1: बहुत सुंदर लगता है।
0: और वहाँ पर रेत पर बैठकर, बालू पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
1: वो कैटरबोन की नजदीक है ना, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पर जाते हैं।
0: और जब से नया रास्ता खुला है तो ओंगेता, ग्लेन पार्क, वाक्वा से निकल कर
1: आसान हो गया
0: आसान हो गया है

0: आसान हो गया
1: इस नए रास्ते से, और फिका फ्लाक जाना बहुत ही सुगम हो गया। सो आप जब समुद्र तट पर जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां आप अपनाती
0: हैं? वहाँ पर लिखा है तो डेंजरस वॉकिंग, या तो यहाँ पर नहीं तो हम इसका अनुभव करना चाहिए कि यहाँ पर नहीं जाना है।
1: जहाँ तक सफाई का सवाल है,
0: जी सफाई है तो जो चीज हमने इस्तेमाल किया तो एक डस्टबिन है वहाँ पर जगह जगह पर, डस्टबिन या तो प्लास्टिक बाग में डालते हैं, घर पर ले आते हैं।
1: और जब कुछ पकाना होता है तो पैर के नीचे
0: नहीं भाई जी, हम कभी भी वहाँ पर पकाने नहीं जाते हैं। okay. जो हम घर से ही कुछ तैयार करके वहाँ लाते हैं,
1: क्योंकि ये सब पैर जो होते हैं, जो फिलाओज होते हैं, कितने साल लगे उनको इतने बड़े होने में, सो उनकी भी सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व बनता है।
0: हम ये सब नहीं करते हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा,
0: साफ रखना चाहिए।
1: सुमाला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैटबोन के रहने वाली हैं और आपने फिका फ्लाक के बारे में हमें बताया। नमस्कार, जय मुरीश, जय सियाराम।

सो अगर हम किसी से बात कर पाते हैं जो जो दक्षिण में रहते हैं इन द साउथ, वे कौन से समुद्र तट पर जाना पसंद करते हैं? फोन करने के लिए नंबर है 40 28 070 402 8070।

जहाँ तक दक्षिण का सवाल है, जो लोग गोंपो में रहते हैं उनका फेवरेट समुद्र तट ब्लूपे होता है, क्योंकि रोजबेल, नुवेल फ्रांस, न्यू ग्रोव, मादालबेयर, प्लेन मायन, इन सभी जगहों से ब्लूबे जाना बहुत ही आसान है। और जब जब से बाईपास रोड खुला है बिटवीन बोवालों एंड ब्लूबे, तो और भी आसान और भी मनमोहक रास्ता है। जब आप निकलते हैं प्लेजों से और उस रास्ते पर चलते चलते आप रवाना होते हुए हवाई जहाज़ भी देख पाते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस ट्रक, और वहाँ पर बहुत से दौड़ने वाले लोग, टहलने वाले लोग जाते हैं। सो एक तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, दूसरा वहाँ की हवा भी बहुत ही अच्छी, और तीसरा लुकिंग एट द प्लेन्स, हवाई जहाज़ों को उड़ान भरते हुए देखना।

So Blue Bay is a favorite seaside resort for those who live in Kompo. जो लोग सवान में रहते हैं आप हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट रिजॉर्ट क्या है. रियोम्बेल है, सुरीनाम या कोई और तट है. लोग ग्रीगी जाना पसंद करते हैं. अगर आप किसी और समुद्र तट के बारे में बात करना चाहें तो अवश्य फ़ोन कर सकते हैं उनका 2 4 2 6.

0: फेमस बीच रिजॉर्ट्स इन मॉरिशस कल 30 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बीचेस डे। प्रोग्राम की शुरुआत में माला जी ने फीका फ्लाक के बारे में बात की। हालांकि ब्लैक रिवर देश के ब्लैक रिवर इलाके में देश के कम पब्लिक बीचेस पाए जाते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि देश के बहुत सारे खूबसूरत से बीचेस ब्लैक रिवर ही में पाए जाते हैं। उनमें से एक है बेशक फीका फ्लाक और दूसरा एक और है लुमोन। लुमोन से जहाँ पर से इलुबेनीचे देखने को मिलता है और इलुबेनीचे में जो बीचेस पाए जाते हैं, जो समुद्र तट पाए जाते हैं, जो बालू वहाँ का है, माय गुडनेस, वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही बार हमें मौका मिला। और बीच में जो इलो क्रिस्टल आता है, जब आप बोट लेते हैं रिवियनवा से या तो तामागन से और जाते हैं इलुबेनीचे पर, और बीच रास्ते में, रास्ते नहीं बीच लगून में आपको दिखता है इलो क्रिस्टल। इलो क्रिस्टल के चारों ओर जो जो पानी है, और जब आप अंदर में देखते हैं तो यू कैन सी द सैंड बिलो, इतना साफ दिखता है, और वहाँ पर तैरना कितना मनमोहक होता है। सो ब्यूटीफुल नज़ारा इन द रीजन ऑफ लुमोन, और वहाँ पर से भी डूबते हुए सूरज का नज़ारा अति मनमोहक। इसे कहते हैं पैराडाइज आइलैंड की एक झलक।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

एस्टेब्लिश कर 48 मिनट दिया लिसनर्स आप हमसे सहमत होंगे कि ज़्यादातर जो पर्यटक जो टूरिस्ट मौसम में आते हैं उनका सबसे बड़ा आकर्षण होता है हमारे बीचेस और हमारे बीचेस जो बॉलीवुड में फिल्म में बनाते हैं वे भी यहाँ के जो बीचेस हैं उनसे आकर्षित होते हैं। आप जो फिल्मों में रुचि रखते हैं आप तो जानते ही होंगे और हमें यकीन है कि जब किसी फिल्म में आप किसी बीच को देख रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये फलाना बीच है। जैसे कि फिल्म अब मोहरा में जब वो गाना चलता है सुबह से लेकर शाम तक तो वहाँ पर भी मॉरीशस के बीचेस को दर्शाया गया है। जब आप देखते हैं फिल्म बाजीगर में मॉरीशस के दक्षिण भाग के एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है और वो भी ऊपर से इन द रीजन ऑफ ग्रीग्री। ऐसे अनेक बार मॉरीशस के बीचेस के नज़ारे बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिले हैं। सो हम बात कर रहे थे उन बीचेस के बारे में जो नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं। एक तो है पुएर्टो पिमा, फिर अगर एक पोल हो जिसमें लोगों से ये पूछा जाए कि उनके हिसाब से मॉरीशस का सबसे खूबसूरत बीच कौन सा है तो बहुत से हमारे जो नागरिक हैं विल वोट फॉर थ्रोबिश एज द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन मॉरीशस। हालांकि अन्य बीचेस भी बहुत अच्छे हैं बट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सैंड इन टर्म्स ऑफ द वेदर, हालांकि वो छोटा है और वहाँ का पानी जो है, सो मेनी पीपल विल वोट थ्रोबिश एज द बेस्ट बीच इन मॉरीशस। आपके हिसाब से थ्रोबिश है या कुछ और? सो थ्रोबिश आता है, फिर गॉम्बे आता है, फिर उसके उपरांत वी हैव कैप मालोरेux, सैन फ्रांसवा, ग्रैंड गोब, पुत्र दो, जिसके विषय में पिछले हफ्ते हमने एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम किया था, अजूर, रोशनोआ, पोस्ट दे फ्लैक जहाँ पर मंदिर पाया जाता है सागर मंदिर, और बेशक जब हम पूरब में आते हैं तो वहाँ पर बेलमा, ट्रूडोडूस और इलोसेफ का जो रीजन है, कैथोसे, पालमा। सो आज हमने पूरे देश की परिक्रमा की और हमने आपको बताया कि 126 पब्लिक बीचेस पाए जाते हैं जिनके प्रमुख नाम हमने आपको बताए। सो हम आशा करते हैं कि हम अपने सभी समुद्र तटों का ख्याल रखेंगे और जब भी हम वहाँ पर जाएंगे तो स्वच्छता का

क्लीनलीनेस का और किस तरह से हम उनको सस्टेन कर पाएं, इन सब के बारे में हम विचार करें। सो इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। याद है कि हर साल के 30 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बीचेस डे। अब की बार जब आप घर से निकले तो सिर्फ मॉल तक जाने का नहीं सोचिए, अपितु कनेक्ट विद नेचर, गो एंड हैव अ स्ट्रोल इन द फॉरेस्ट। ग्वियादेशिन को तोड़ें लेकिन साथ ही साथ बीच पर जाएं, वहां पर तैरें, स्विमिंग करें और साथ ही साथ अपनों के साथ अच्छा समय बिताएं और अपने सेहत के बारे में भी सोचें। नमस्कार, जय मॉरिशस।

0: पुराने नगमे।
1: 5:09 हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ पूनम, आपके फेवरेट प्रोग्राम पुराने नगमों में आपके साथ हूं। आज बात हम करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसका अंदाज, पोल डांस, फुल एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी कि नज़र ना हटे। यस, हम बात करने जा रहे हैं किमी खाटकर की, टार्जन गर्ल की, चुम्मा जुम्मा दे दे वाली गर्ल, जो कि जिनकी बातें, जिनका एक्शन, जिनकी खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि आज भी उनको याद किया जाता है। तो हम आज बात करेंगे उनकी दिलचस्प फिल्मों की, बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी की, बातें करेंगे और हम बात करेंगे स्पेशली उनकी वो मूवीज़ जिसमें उन्होंने सारी दुनिया को एक बार तो हिला के रख दिया। चलिए जी, गाने सुनते हैं और साथ में मेरे बने रहिए पुराने नगमों के साथ।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:16 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं किमी काटकर जी की। जी हाँ, उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1965, यानी कि 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में। उनकी माँ मीना फर्नांडिस भी फिल्मों से जुड़ी हुई थी, एक्ट्रेस थी। किमी ने करीब 17 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। कॉन्फिडेंस ऐसा कि पूछो मत, लुक्स ऐसा कि पूछो मत, और कैमरा के सामने जब उनका अंदाज आया और यही रास्ता उन्होंने जल्द ही फिल्म तक ले आया। और फिल्मों में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो सबकी आंखें फटी की

0: खड़ी रहेगी, क्योंकि उनका बोल्ड अंदाज इतना ज़बरदस्त था कि वो किसी भी एक्टर के सामने डरती नहीं थी और बस इतना कहती थी कि मैं बनी ही हूँ मूवीज़ के लिए और मैं काम करूँगी मूवीज़ के लिए और ज़िंदगी मेरी चलेगी मूवीज़ के साथ। यही होता है ज़िंदगी में, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो एक छोटी उम्र में और वो कॉन्फिडेंस ऐसे सामने आ जाए तो फिर क्या बात कह रही। तो चलिए भाई हम बात करते हैं किमी काटकर की और सुनते हैं उनकी मूवी के गाने।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:23 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ और हम आज बात कर रहे हैं किमी काटकर की। जी हाँ, 1985 में पत्थर दिल से किमी काटकर ने सपोर्टिंग रोल में फिल्मों की शुरुआत की, लेकिन उसी साल आई एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। टार्जन ने तो बस कहानी ही बदल दी। हेमंत बिरजे की अपोजिट किमी का ग्लैमरस रोल और उनका जो कॉन्फिडेंस था, जो उनका अंदाज था, जो बोल्ड करेक्टर था, जो कि कहते हैं कि बॉलीवुड में उस तरीके के कपड़े पहनना उस टाइम तक किसी ने भी शुरू नहीं किया था, पर जिस तरीके से किमी काटकर ने अपना अंदाज दिखाया और कहा कि हाँ मैं फिट होती हूँ टार्जन मूवी यानी जंगल के वर्ल्ड से रिलेटेड एक मूवी के साथ में, और बॉलीवुड ने उसको एक नाम नया दिया टार्जन गर्ल। टार्जन गर्ल ने ऐसे कमाल किए कि यहाँ पर बॉलीवुड हिल गया और हर एक्ट्रेस को समझ आया कि ये भी एक तरह से एक्टिंग है। बोल्ड होना गलत नहीं है, बोल्ड होना यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ आके उस मूवी उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मूवी करना। ये थी किमी काटकर।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:31 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ। पुराने नगमों में हम उन एक्टर या एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के लेकर आते हैं जिनकी कहानियाँ बहुत अजीब सी होती हैं, कई बार ऐसे बिल्कुल स्क्रैच से उठते हैं, कई बार वो किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं और कहें जैसे उनके पेरेंट्स या फिर वो वहाँ से चलते हुए उनको एहसास होता है कि हम भी एक्टर या एक्ट्रेसेस में से कहीं जगह फिट हो सकते हैं। पर पुराने नगमों में जब बात होती है ना कुछ ऐसे खास कलाकारों की जिन्होंने इंडस्ट्री को एकदम से बदल के रख दिया, उसमें से एक नाम है किमी काटकर जी का। 1989 में उन्होंने तकरीबन 15 फिल्में की, जैसे ही

रिलीज हुई उनका उस मूवी का नाम था मीरा लहू दरिया दिल सोने पे सुहागा गैर कानूनी जैसी करनी वैसी भरनी वर्दी खून का कर्ज और हम जैसी फिल्मों ने तो जो धूम मचाई पूरा बॉलीवुड ही नहीं पूरे वर्ल्ड

0: बाद धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स के साथ में स्क्रीन शेयर की। और जब बात करते हैं हम टार्जन मूवी की, तो कैसे इस गाने को भूल सकते हैं, क्योंकि जिसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया उसका गाना तो एक बार बनता ही है। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:40 हो चुके हैं दोस्तों और हम आज बात कर रहे हैं किमी काटकर की। जी हाँ, 1991 में आई थी हम मूवी, जहाँ पे उन्होंने साथ दिया अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी थी उस हिसाब से, जहाँ पर किमी काटकर बिल्कुल यंग एक फ्रेश फेस था बॉलीवुड के लिए, जहाँ पर उनके साथ में रजनीकांत भी थे और गोविंदा भी थे कई मूवीज़ में। उससे पहले गोविंदा के साथ वो बहुत सारी मूवीज़ में खुद मेन लीड में थी, पर उसके साथ जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ किया तो उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी एज और अमिताभ बच्चन की एज में इतना बड़ा गैप है। पर क्या कहते हैं कि जो एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है, वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं उस कहते हैं ना करेक्टर में, कि उन्हें या तो उनको पता नहीं चल पाता या ऑडियंस को नहीं पता चल पाता कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं या वो किन को देख रहे हैं। ऑडियंस इतना खुश हुई हम मूवी को देख के, और ये तो आप जानते ही हैं कि मॉरिशस में भी बनी वो मूवी, उसमें कई सीन मॉरिशस के हैं। और वहाँ पर जब बात करते हैं कि बहुत सारे गानों के साथ जब आवाज़ आई दरिया दिल मूवी के अंदर नितिन मुकेश साहब की, और नितिन मुकेश साहब ने जब गाना गाया गोविंदा पे पिक्चराइजेशन हुआ, साथ में किमी काटकर थी, वो गाना इतना खूबसूरत हुआ। चलिए उस गाने को सुनते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे फिर से हम मूवी के ऊपर।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे। 5:47 हो चुके हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं किमी काटकर की, जी इतनी पॉपुलैरिटी के बाद अचानक से फिल्मों में किमी काटकर ने दूरी बना ली। 1992 में उन्होंने फोटोग्राफर और एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर शांतनु शेरॉय से शादी की। किमी ने खुद बताया कि उनके कैरियर और पर्सनल लाइफ में दोनों को बैलेंस करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, और उनको मामा बनना था, यंग मदर बनना इतना आसान भी नहीं होता। और उन्होंने कहा बॉलीवुड को बाय-बाय और पर्सनल लाइफ को कहा हाय। तो ऐसे ही उनका एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है सिद्धांत। और अब बात आती है कि जुम्मा चुम्मा गर्ल आजकल है कहाँ। बहुत सालों तक लोग उनको ढूंढते रहे, उन्होंने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो कहाँ गई, बॉलीवुड से उन्होंने कहाँ पर अपना बसेरा बसाया। उन फिर पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, और वहाँ से जब लौटी इंडिया तो उन्होंने अपना आशियाना बनाया गोवा में, जहाँ पर उनकी फैमिली है और बिल्कुल शांत इंजॉय अपनी फैमिली को के साथ कर रही हैं। उसके साथ में मुंबई में भी उन्होंने अपना एक घर रखा हुआ है, पर वो अब एक ग्रैंड मदर बन चुकी हैं, यानी कि पूरे दिन अपने बच्चों के साथ में और बच्चों के साथ में बच्चों के साथ में इंजॉय करती हैं, और साथ में बहुत सारे कोर्सेज देती हैं, जैसे बेकिंग कोर्स देती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कैमरे के सामने आना बहुत अच्छा लगता था, और छोटी उम्र में आ गई तो उतना जो एक चार्म था या जो पैशन था बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। पर मैं ये कहती हूँ कि मुझे कैमरा के सामने आज भी आना अच्छा लगता है, पर मैं दूसरों को कहा कि तुम आगे आ जाओ, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो फिर बस बात ही क्या। पर उन्होंने एहसास किया कि एक बार जब वो माँ बनी और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से जी लिया, तो कहती हैं मुझे इच्छा नहीं है, बस मुझे इच्छा है कि मैं बहुत खुश रहूँ, इंजॉय करूँ। बॉलीवुड को इंजॉय किया, अब मैं ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहती हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात थी, उन्होंने इस तरीके से अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचा, और बहुत सारे अवार्ड्स जीते उन्होंने। तो चलिए, वो वाला गाना कैसे भूल सकते हैं, जुम्मा जुम्मा दे दे।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: Bum chick chick bum, chick bum bum bum chick chick bum, chick bum bum bum chick chick bum, chick bum bum bum chick chick bum.
2: किमी खटखट के गानों के साथ हम थोड़े लेते हैं इजाज़त, बट उसके साथ पे आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार और उसके बाद नई सोच. मैं थी आपके साथ पूनम.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक शाम के 6 बज रहे हैं। घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे आज पहले आज की सुर्खियां। वाकवा जिमखाना में 360 नए पुलिस अधिकारियों ने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। समारोह में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राष्ट्रसभा में पेश करेगा। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। इसमें शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग करने पर वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के कारण भारी तबाही में के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बुधवार को नेपाल तिब्बत सीमा पर आए इस संकट में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत। मुका स्थित महात्मा गांधी संस्थान में ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर मॉरिशस की विरासत स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को समर्पित एक मंच आयोजित किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। इस शनिवार 360 नए पुलिस अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के समापन पर पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। यह आधिकारिक समारोह वाकवा के जिमखाना में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम

0: fait différence, c'est ce qui est bien fait et que c'est pas obligé de faire.
1: C'est moi qui vous dis des sacrifices.
0: Mais normal, mais sacrifice, ça veut dire qui vous fait, hein, vous fait promis, ça veut dire les martiaux le travail. J'ai marqué une question là vous-même. Sacrifice ça. Qui m'a fait dans mon bureau, voter à la lumière, vous dire mettre la bougie. Moi, mon préfet, c'est qui bien fait. Hein. Je ne pas supposé à l'UN là. Mais connaît qui est arrivé là. Tout bien augmenté. Le monde. Tout bien augmenté. Loin l'Amérique. Mais sans avion. Une promise que pour rester. Hein. Dans le bed and breakfast d'après vous. Mais ça reste dans l'hôtel. Non. Mais dans mon pays, il y a coût. Vous connaissez dans mon pays, c'est pas l'UN. À cause coût. Mais au fait, pas dans nous l'avantage par l'île. Hein. Quand tu parles des affaires chagos là. Mon pays balance entre ça et le coût. Mais ça, on va retrouver ça.
2: मोशस रोड्रिक्स में वर्तमान में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी लागू हैं। ये ऊंची लहरें मुख्य रूप से देश के दक्षिण पश्चिम तट को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय सावधानी बरतने की मांग की है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में पेश है।
3: इसका असर खासतौर पर पश्चिम से दक्षिणी तट तक के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह से ही प्लीकॉम्फ्लक्स से लेकर लिमोन तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बीच समंदर में कुछ पर्यटक भी नजर आए। कुछ लहरें हैं, हम दूर समुद्र में नहीं जा रहे। गहरे समुद्र में जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, सावधान रहना चाहिए, खतरा हो सकता है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली तेज लहरें न केवल मॉरिशस बल्कि रोड्रिक्स में भी समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। इसी वजह से तेज समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो सोमवार तक लागू रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि उच्च ज्वार के समय बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है, खास रूप से पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में। हवाएं भी तेज हो रही हैं और झोंकों के साथ चल रही हैं। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
2: कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की डर्बन में आयोजित हालिया सदैक शिखर सम्मेलन में भागीदारी के परिणामों पर विचार किया गया। मॉरिशस के प्रस्तावों में शामिल है मॉरिशस को एक इलाकाई डिजिटल और तकनीकी केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए डिजिटल एम्बेसी विलेज का निर्माण, साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए बढ़ा हुआ समर्थन। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनवरी 2025 में 8 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान करके सदैक के भीतर मॉरिशस की वित्तीय स्थिति को नियमित करने की भी जानकारी दी। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में शराब, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन को जब्त करने और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान है। इसमें रोड रेज को भी एक अपराध घोषित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डेंजरस ड्राइविंग से मौत का कारण बनने और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रेसिंग जैसे अपराधों के लिए भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान इसमें किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कल इस पर गौर किया गया। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ साथ MITD प्रशिक्षण केंद्रों के कर्मचारियों के लिए स्कूल अवकाश घोषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इसका जायजा लिया। कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मॉरिशस म्यूजियम्स काउंसिल के सहयोग से 18 सितंबर 2026 को सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती मनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उनकी स्थायी विरासत का सम्मान करना, उनके कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले एकता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को याद दिलाना तथा युवा पीढ़ी को मॉरिशस की पहचान के निर्माण और विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर आज सुबह मोका के महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस की विरासत, स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को समर्पित एक मंच आयोजित किया गया, एक फोरम लगाया गया। इस कार्यक्रम में कई महानुभावों ने भाग लिया।

0: जैसे गणराज्य के राष्ट्रपति तथा कला एवं संस्कृति मंत्री वहां उपस्थित रहे। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पुराने पत्थरों के पीछे कई आवाजें छिपी हैं, कई जिंदगियां, मुलाकातें, बिछड़ने की कहानियां और कभी कभी ऐसे जख्म भी जो पीढ़ियों से चली आई हैं। मॉरिशस में ये निशान कई अलग अलग स्मृतियों से बनी एक साझा कहानी बयान करते हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक स्मृति पर आधारित देश के ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों पर ये फोरम आयोजित किया गया। उद्देश्य इन धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विचार करना कि अलग अलग इतिहासों को आने वाली पीढ़ियों तक किस तरह पहुंचाया जाए। गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा, कहते हैं अलग अलग जहाज़ों में आए, अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन आज सभी एक ही जहाज़ में हैं। सभी को साथ में मिलकर पतवार चलाना है। ऐसे स्थल हैं जिसकी बदौलत हमें धरोहर में प्राप्त समाज को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और साझा समाज के निर्माण पर चिंतन किया जा सकेगा भावी पीढ़ी के लिए। इस विचार विमर्श के साथ कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 वर्षों में 124 मिलियन रुपए और मेबर्ग के राष्ट्रीय इतिहास म्यूजियम के लिए 100 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 100 मेमोरियल सेंटर को भी जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। मंत्री महेंद्र गुंडिया ने कहा, मंत्रालय इन ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। कार्य की प्रगति के वास्ते विशेषज्ञों की भी मदद मिलती है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है ताकि आगे बढ़ सके। इन संरक्षण परियोजनाओं के पीछे उद्देश्य इस ऐतिहासिक स्मृति को जीवंत बनाए रखना है। एक बहुआयामी स्मृति है जो अलग अलग इतिहासों और समुदायों से मिलकर बनी है, जिसने मिलकर मॉरिशस के निर्माण में योगदान दिया है।
0: मॉरिशस से 415 किलोमीटर उत्तर में स्थित सैमहोंडू में देश के बाकी हिस्सों के साथ संवाद करना कभी भी आसान नहीं रहा है और अब तक वहाँ काम करने वाले लोग मुख्य रूप से रेडियो और सैटेलाइट टेलीफोन के ज़रिए ही अपने परिवार वालों से संपर्क कर सकते थे और इंटरनेट कनेक्शन अब सुरक्षा बलों और मछली पकड़ने के ऑपरेटरों के दैनिक जीवन को आसान बना रहा है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: सैमहोंडू में लंबे समय तक सैटेलाइट फोन और रेडियो ही मॉरिशस से संपर्क में रहने का मुख्य साधन रहा है। ये उपकरण अटोल पर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन महंगे होने के साथ साथ इनकी सुविधाएं भी सीमित हैं। ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन की शुरुआत ने पूरी स्थिति बदल दी। इस परियोजना के लिए टेंडर जीतने वाली कंपनी एमटेल अब सैमहोंडू में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अटल पर रहने और काम करने वाले लोगों ने इसे पहले ही एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्वागत किया।
2: Ce qui s'est passé maintenant, c'est vraiment très important.
1: राफेल फिशिंग कंपनी के बेथॉन बुले ने कहा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार जब नहीं होता तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए दूरदराज कंपनी का प्रबंधन तभी बेहतर होगा जब जान पाएंगे कि क्या हो रहा है।
3: Face beaucoup moins de difficultés dans le passé, surtout quand il y a man search and rescue operations qui nous tiennent là-bas.
1: Vishwanath Virasamy ne kaha, विगत में कई कठिनाई हुई राहत ऑपरेशन के दौरान संदेश पहुंचाने में और रिपोर्ट भेजने में भी। वहां काम करने वाले लोगों की ज़रूरतों से बढ़कर ये नया कनेक्शन अधिक समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है, खासकर गणराज्य के सबसे दूरदराज इलाकों के लिए। मंत्री अविनाश राम टोहल ने कहा, अब सैमहोंडू को भी कनेक्ट किया गया है लियो टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इसकी लागत कम है, कनेक्शन भी ज्यादा शीघ्र है।
4: Vous êtes aussi qu'à contacter les autres familles.
5: Après qu'il finit fini faire connecter à Galega, d'aller peut connecter.
1: Tesarajan Pilechidambaram ne kaha Agaliga ke baad Rafael Tapu aur Sainbondon ko jod rahe hain, sabhi Mauritian chahe jis bhi टापू पर हो कनेक्टिविटी का अधिकार रखते हैं। एमटेल के लिए भी ये परियोजना मुख्य आबादी वाले क्षेत्रों से बढ़कर कनेक्टिविटी का विस्तार करने और गणराज्य के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के और करीब लाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
6: I think I'm

0: मौसिलो अलेमान ने कहा, हमारा मिशन इस कनेक्शन को स्थापित करना ताकि सभी इससे जुड़ सके व्यापार, मनोरंजन आदि के लिए। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और स्थापना का काम शुरू हो गया है। इस तरह सैंबाउडो में मॉरिशस गणराज्य की कनेक्टिविटी के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
1: ऑटिज्म के प्रति जागरूक करना, जानकारी देना और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलना है। ईस्टर्न वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डिजेबल्ड ने आज सुबह फ्लैक में इसी उद्देश्य को समर्पित एक मार्च का आयोजन किया। ये उचित सहायता और मार्गदर्शन के महत्व की याद दिलाने का एक अवसर था, साथ ही उन परिवारों को अपनी बात रखने का मंच देना था जो इस वास्तविकता को हर दिन जीते थे। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे, इस शनिवार 360 नए पुलिस अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के समापन पर पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये औपचारिक समारोह वाक्वा के जिमखाना में लगा। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: ये गर्व के साथ अपनी नई वर्दी पहने हुए हैं ये युवा रिक्रूट 10 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि पुलिस सेवा में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए वे जरूरी कौशल और क्षमताएं हासिल कर सकें। केवल 20 साल की उम्र में इस युवा रिक्रूट को अपनी बैच का सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट चुना गया है। कोई राज की बात नहीं, इसके लिए केवल कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और त्याग की आवश्यकता है। ये एक नेक पेशा है जहां हम पुलिस बल में हर रोज देश व जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करती है। 360 युवा महिला और पुरुष रिक्रूटों ने प्रधानमंत्री के साथ साथ पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आधिकारिक रूप से परेड की। ये प्रदर्शन उन विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में से एक था जिनसे इन रिक्रूटों को गुजरना पड़ा। ये वर्दी मेरे त्याग को दर्शाता है जिससे मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्रशिक्षण में हमें अनुशासित होना सिखाया गया जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। ये एक पारामिलिटरी प्रशिक्षण है जिससे मेरे चरित्र को दृढ़ बनाया गया है और मानसिक शारीरिक रूप से मैं प्रशस्त और अनुशासित भी बना हूँ। अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध ये अधिकारी सबसे पहले देश और जनता की सेवा करना चाहती हैं। पुलिस एक नेक पेशा है, हम समाज की सेवा करते हैं, जनता के संपर्क में होते हुए जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। बचपन से मैं एक पुलिस अफसर बनना चाहता था, देश और जनता की सेवा करना चाहता था तथा मेरे दादा जो एक पूर्व ACP थे उनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ। गर्व के इस पल को उन्होंने अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने दूर रहकर भी हमेशा उनका समर्थन किया। 10 महीने दूर रहे, ऐसा पहली बार हुआ कि हम इतने लंबे अरसे के लिए दूर रहे, पर ये भी समझ गया कि एक बार पुलिस फोर्स में कदम रखना मतलब सब कुछ बदल जाता है। इसका हौसला बढ़ाया गया, बहुत सलाह दिया, फिर इसने अपना रास्ता खुद तय किया। पूरे ट्रेनिंग में इसका समर्थन किया हमने, माँ बाप, भाई बहन सभी का साथ मिला। अब ये नए रिक्रूट अपनी अपनी यूनिट में शामिल होंगे और अपने प्रशिक्षण के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। इस बार वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हुए वे अपने अनुभव और कौशल को और मजबूत करेंगे।
1: और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें नेपाल तिब्बत सीमा पर आए विनाशकारी अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या आज 600 पार कर गई है और करीब 2400 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कई विदेशी भी शामिल हैं जो वहां पर पर्यटन के लिए या फिर हिमाचल में तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे और अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 4 से 5 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है जो उसकी अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा है। इस आपदा के बाद भारत 62 टन आपातकालीन सहायता पहुंच

जाने वाला पहला प्रमुख देश बना। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। देश में सोमवार 10 बजे तक ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी बरकरार रखी जा रही है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में एक जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज हवाएं और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दिन के दौरान भी मौसम बरसाती रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15, अधिकतम 17 से 20, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर में खासकर दक्षिण पश्चिम में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों तथा तटों पर भी न जाने की मांग की जाती है, खासकर ऊंचे ज्वार के समय, और हवा भी तेज रहेगी। यहाँ वहाँ उड़ती चीज़ों से बचने, ऊंचाई वाली जगहों पर काम करने से बचने और सड़कों पर क्रॉस विंड्स के कारण ज़्यादा सतर्कता बरतने की मांग की जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:20 पर, शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर शिव का साथ रहा। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: news on NBC Play. NBC Play. NBCRadio.tv. NBCRadio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए। नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल में, नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकिया जीवलाल, श्रीमती सुकिया जीवलाल पैदाशी नाम छतू और जो नोएली के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 2 PM। मिस्यू लीन लालुई कैथोबोन में, मोंसेयर लीन लालुइज कैथोबोन में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती आनी रागू, श्रीमती आनी रागू पैदाशी नाम लक्ष्मण और जो आनी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 ला शापेल और दौंत दिलियन सन सब बासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM। मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश में, मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती एलामा रामिया, श्रीमती एलामा रामिया जो कमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शुमे माशिन पालमा काथोबोन में, शुमे माशिन पालमा काथोबोन में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री कुपुसामी मामुंजी, श्री कुपुसामी मामुंजी जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे मोहा पिचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में, आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलारी सिबालक, श्रीमती दुलारी सिबालक जो

0: अमरोजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके मकान आनंद रोड लेस्पेरांस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM। नंबर 7 इमाम मुस्तफ़ा अदमद स्ट्रीट कॉन्योलोफ पोटरी में 73 साल की 73 years old की श्रीमती शिंगफू यिपुन सन, मिसिज शिंगफू यिपुन सन, पैदाशी नाम लाम चान की और जो आफुक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, गुजर गई है। उनका जनाजा, उनका ताबूत कल दिन के 1 बजे लाशा पैलाओ दौ दो मुहापित से त्रिविया से उठाकर दफनाने के लिए शिबैल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Radio.
2: Your news on NBC Play. NBC Play. NBCRadio.tv. NBCRadio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio.

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 6:33 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ, यानी मैं हूँ आपके साथ पूनम। और हम बात करने जा रहे हैं आज ऐसी सिचुएशन की ऑफिस में जहाँ पर बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, कंपटीशन भी होते हैं, और कंपटीशन इंसान को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या वो जो कंपटीशन है वो हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं या और थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं। चलिए इसी पर छोटी छोटी सी बातें करते हैं। पर अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर, और अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आपको या आपके साथ में कुछ फ्रेंड्स को या कलीग्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे नई सोच के साथ। एंजॉय कीजिए गानों को।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है नई सोच में। मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों ऑफिस में आगे बढ़ने की इच्छा होना बिल्कुल अच्छी बात है। किसी कलीग्स ने अच्छा किया तो हम भी सोच सकते हैं कि मैं भी कुछ बेहतर करूं। इसने इसको कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसके काम को पसंद कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन तब तक अच्छा लगता है जब तक वो आपको मोटिवेट करे, आपको एहसास दिलाए कि उसके अच्छे काम से मुझे भी अच्छा करना है। किसी दूसरे की सक्सेस अगर आपको परेशान करने लग जाए, अगर एहसास होने लग जाए कि वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी तो सब तारीफ करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते, जब यहाँ ये बात आ जाती है तो फिर सोच बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये फिर जब ईगो आ जाती है या फिर इसके अंदर मैं का जो कड़वा जहर है ये जब भर जाता है तो इंसान को बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, और निकालने के लिए उसको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि एहसास ही नहीं हो पाता कि वो कब गलत जगह पे, कब गलत राह पे चल दे। तो इसलिए हम कहते हैं नई सोच में हमेशा अच्छा सोचो।
1: RM3 Radio.

0: 6:44 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। और नई सोच में हमेशा हम यही कहते हैं कि नई सोच मतलब नया सोचना। कभी कभी हम देखते हैं किसी को अच्छा प्रोजेक्ट ऑफिस में मिलता है, किसी की तारीफ होती है, किसी प्रमोशन मिलता है। कई लोग बहुत पहले से जुड़े होते हैं और नए लोगों को आगे चांस मिल जाता है आगे बढ़ने का, ऑफिस में साथ जुड़ने का। बॉस उन्हें अप्रिशिएट करता है, पर लोगों को बहुत सारी जलन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्त, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, आगे बढ़ने का सबका समय अलग होता है। किसी को प्रोग्रेस मिलती है तो अच्छा लगता है उसको, आपको अगर उससे आपको जलन हो रही है तो इसका मतलब कि आपको उस इंसान के साथ बैठ के पूछना चाहिए या अपने बॉस से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा स्किल सीखूं जिससे कि मेरी भी प्रमोशन हो सके, जिससे मेरी भी आगे प्रोग्रेस हो सके, मैं बेहतर इंसान बन सकूं, मेरी भी एक पहचान बन सके। पर जहां पर अगर आपको एहसास हो जाता है कि इसकी प्रोग्रेस से आपका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वहां पर बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, उम्र की कोई जगह नहीं रखिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको कुछ सीखना चाहिए और आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, आप 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं, छोटी सी भी चीज़ अगर आपको लगती है, जैसे एक सिंपल फ़ोन चलाना ही आपको सीखना चाहते हैं, तो जाइए किसी से बोलिए कि मुझे, मैं आपको पे करता हूँ, मुझे फ़ोन चलाना शुरू से सिखाइए। कंप्यूटर अच्छा लगता है आपको, आप सीखना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ में, आप ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं तो भी सीखना चाहते हैं, उस स्किल को सीखिए। हो सकता है कि ऑफिस में उसकी ज़रूरत ना हो पर घर में ज़रूरत हो, तो अगर घर में भी ज़रूरत है या ऑफिस में ज़रूरत है, स्किल को आगे बढ़ाते जाइए, सीखते जाइए। अपने हाथों पे विश्वास रखिए, अपने दिमाग पे विश्वास रखिए, अपना अच्छा खाइए, अपनी आँखों को एक्सरसाइज दीजिए। जब जब ये आप चीज़ें करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे।
1: RM3 Radio.

छः बज के 51 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जहाँ पे हम हमेशा आपके साथ वो बातें करते हैं जो कभी कभी हम सिर्फ इग्नोर कर देते हैं या कभी कभी हमारे दिमाग में आती है और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम शायद ओवर थिंक कर रहे हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे नई सोच में कि कलीग से, जैसे कि ऑफिस में अगर किसी के साथ कॉम्पिटिशन करना है या सक्सेस पानी है या कोई हेल्दी कॉम्पिटिशन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अगर किसी को पीछे करना ज़रूरी नहीं है, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे ये कहें कि मतलब तूने अच्छा काम नहीं किया, अरे तेरी तो तुझे तो आता ही नहीं, अरे मैं तो तेरे से बहुत पहले से आया हूँ या आई हुई हूँ तो तुझे नहीं पता। अगर आप अपने कलीग्स का आप देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो हो सकता है वो भी आपके रिटर्न में, जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो वो भी तारीफ़ करेंगे। अगर आप हमेशा उनको

0: को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और हमेशा उनमें कोई कमी निकालते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो भी आपके साथ में वैसा ही हालात शुरू कर देंगे कि आपके हर काम में कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमियां निकालनी शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब मैं भी आगे बढ़ूँ और आप भी आगे बढ़ें, यही तो अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और यही एक पहचान होती है एक अच्छे ऑफिस की और अच्छे कलीग्स की और एक अच्छे एनवायरनमेंट की। जो चीज़ आप सीखते हैं उसी से ही आपकी ज़िंदगी बनती है। आप अपने बॉस से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने कलीग्स से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ जो आपको आता है वो आप अपने लोगों को अपने स्टाफ को भी सिखाते चले जाते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन रखिए, प्रेशर बिल्कुल दिमाग में मत रखिए। बस अगर कहीं ड्राइव कर रहे हैं या घर में हमें सुन रहे हैं तो हम इतना ही कहेंगे, नई सोच में एक नया बेहतर इंसान बनना है। नई सोच का मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐसी बात अपने दिमाग में रख लें जो आपको तो लगे कि नई सोच है, मैंने ऐसा सोचा, पर दूसरे के लिए वो खतरनाक हो सके। तो चलिए भाई, मैं हूँ आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए अपने गानों को, उसके बाद आप जुड़ पाएंगे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के साथ जहाँ पर हम चलाएंगे पुराने गाने, कोई भी हमारा तो मूड होता है, पर हम एक घंटा टिकटॉक पे रहेंगे और उसके बाद जुड़ेंगे आपके साथ आपके मैसेजेस और आपके फोन कॉल्स के साथ साथ। तो इंजॉय कीजिए अपने इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: नमस्ते यादव, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 7:07 हो चुके हैं और ये टाइम है थोड़ा सा सुकून बांटने का, थोड़ा सा सुकून लेने का और थोड़ा सा सुकून के साथ जीने का। कहते हैं ना, हम पूरे दिन इतना कुछ हिसाब किताब करते रहते हैं और जानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट हम आपको इतना ही कहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी, ये परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हमेशा ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। पर जो ये जो टाइम है ना आपका, ये निकल जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, थोड़ा सा पीछे चल के देख लीजिए कि जो बातें आपको पहले बहुत भारी और परेशान करती थी, वो आज कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। पर आप आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे गानों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आप के साथ इंसान जुड़ा हुआ है। तो हम तो आपको यही कहेंगे, परेशानियों को थोड़ा सा पीछे फेंको, उसको बोलो जा अभी मेरा टाइम है गानों का, डांस करने का, थोड़ा सा मस्ती करने का, थोड़ा सा विश्वास के साथ जीने का। और ये जो टाइम है ना, ये सीरियसली आपके लिए है। 7:07 और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 7 से 9 हम आपके लिए लेकर आते हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम, जहां पे गाने होते हैं आपकी पसंद के, थोड़े से मेरी पसंद के। वैसे नॉर्मली मैं एक लास्ट गाना अपनी पसंद का डालती हूँ, बाकी सब आपकी पसंद के होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको गाने ऐसे सुनने हैं जिससे थोड़ा सा मूड आपका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, तो जरूर भेजिएगा 5250620 पर व्हाट्सएप पे। और अगर कॉल के साथ जुड़ेंगे तो आपको जुड़ना पड़ेगा 4028070 पर। और अभी थोड़ी देर हम रहेंगे टिकटॉक में 1 घंटा, पर उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे आपके गानों की फरमाइश के साथ। पर फिर भी आप हमें अपने गाने ज़रूर भेज सकते हैं, हम बिल्कुल एक एक करके चलाएंगे। इंजॉय कीजिए अपने गानों को और अपनी शाम को खूबसूरत बनाएं। ये है आपका दिलों की आवाज़ कार्यक्रम।
1: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:21 हो चुके हैं और इस समय बहुत सारे लोग ड्राइव कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेस्टिनेशन ज़रूर चूज़ किया होगा। हो सकता है किसी के घर पे लंच पे जाके वापस आ रहे हों, किसी के घर डिनर पे जा रहे हों, कहीं कोई बाहर शॉपिंग करके आ रहा हो वापस और कह रहा हो बच्चों को चलो भाई घर चलते हैं, अब थक गए हैं। और कई लोग इस समय किचन में होंगे और खाना बना रहे होंगे या अपने डाइनिंग टेबल के पास बैठे होंगे और बहुत सारे जने बातें कर रहे होंगे। खिच खिच खिच खिच खिच, ये जो टाइम होता है ना, मतलब जो बातें वालों का टाइम होता है, ये बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसी टाइम तो एहसास होता है कि भाई हम सब, क्योंकि पूरे दिन तो ऑफिस रहते हैं, कोई यहाँ चला गया कोई वहाँ चला गया, पर उसके बाद जब ये डाइनिंग टेबल पे जुड़ते हैं ना और बहुत सारी बातें होती हैं, कोई अच्छी कर रहा होता है, कोई नाराज़ हो जाता है, कोई बोलता है तुमने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, अरे बोलने दो ना क्या जा रहा है टेंशन, क्योंकि जब ये सारी बातें होती हैं तभी तो एहसास होता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए भाई हम तो यही कहेंगे आप थोड़ा बहुत डांस कर लीजिए। और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं, चलिए हमारे साथ इस समय टिकटॉक पर जुड़े हुए

0: हैं इवो, जिनका आज बर्थडे है और हम उनको बोलेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। उन्होंने बोला एक बलून फुला के दिखाओ, पर मैंने तो उनको इतने सारे बलून दिखा दिए, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो हम आपको बोलेंगे इवो हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो। साथ में जेविना जुड़ी हुई है और एक नाजिया हसन का गाना सुनना चाहती हैं, पर हम चलाएंगे थोड़ी देर बाद, एक घंटे के बाद, क्योंकि मूड अभी कुछ पुराने गानों का है। इसके साथ में देवेन नंदी वाला जी जुड़े हुए हैं, फरदीन जुड़ी हैं, शशि तुलसी जी, और उनकी कल एनिवर्सरी है, 65th एनिवर्सरी, और हम उनके लिए एक प्यारा सा गाना चलाएंगे, ऐ मेरी जहरा जबी। और एक और हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, साथ में जितेन है, साथ में सुल्ताना जारा, आसिम फ्रॉम शियारा, वेनिसा, प्रीतम जो कि अपने हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा गाना सुनवाना चाहती हैं, नीलिमा साथ जुड़ी हुई हैं, मनीषा वेदना कतरबून से जुड़ी हुई हैं, संध्या सुनाली, सानवी सोनाक्षी, कवि श्याम, और जो कि अपनी राधा वाइफ के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। वैसे उनकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता, बट उनका खुद का नाम श्याम है, तो हमने उनकी वाइफ का नाम राधा दे दिया, क्या करें भाई, कोई पूरा नाम बताया करो। शशि तुलसी जी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रहे हैं, लक्ष्मण मालू जी साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल नेम वाली एंजल साथ दे रही हैं। और इन्जॉय करिए पुराने गानों को, तो हम तो आपको कहेंगे इन्जॉय कीजिए पुराने गाने, पर साथ में अपने भी जुड़े रहिए, और अपने को थोड़ा सा ट्रीट ज़रूर दीजिए, चाहे थोड़ा कुछ मीठा खा के, नहीं तो प्यारी प्यारी सी मीठी बातें करके।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 35 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज के साथ। और दिलों की आवाज में नाम ही ऐसा रखा हुआ है हमने, जहाँ पे आवाज चलती तो है बट आती सीधा डायरेक्ट दिल से है। और जब दिल से आवाज़ आती है ना, तो एहसास होता है कितना इम्पॉर्टेंट है ये दिल, क्योंकि ना जाने कितनी चीज़ें इसके अंदर समाई हुई है। पर जब ये शाम होती है तो बस ऐसी आवाज़ें आती हैं कि हाँ भाई कहाँ हो तुम, जिसके लिए ये गाने चलाने हैं। तो भाई आपके इतने सारे जब मैसेजेस आते हैं, चाहे अभी इस समय हम टिकटॉक पे लाइव जुड़े हुए हैं, और उस समय आप सब अपने उस इंसान को याद कर रहे हैं जिसको सच में आपका दिल याद कर रहा है, और हम भी आपके लिए वही गाने लेकर आते हैं जो आपकी पसंद के होते हैं। इस समय हमारे साथ साथ दे रही हैं सुनीता जी त्रियोले से, ललित जी यूएसए से, आशा लुकमन लुकनाथ जी साथ दे रहे हैं, दुर्गा जी साथ दे रही हैं, इंदिरा जी साथ दे रही हैं, ले कलीमा जी, प्रमोद कुमार, ऋषि राम, दिनेश गोपी जी, एलविन जी एंड सुरेखा जी साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव को शेयर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने गानों को। और हम इतना ही कहेंगे, कई लोगों की अलग अलग पसंद होती है, पर जो पसंद आपकी है उसकी तो बात ही क्या, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। पर एक घंटा जब हो जाएगा उसके बाद हम लाइव से तो चले जाएंगे, बट हम जुड़ेंगे आपके साथ, यानी कि हमारे वो प्यारे प्यारे लिसनर जो हमारा साथ हमेशा 24 आवर्स देते हैं। इंजॉय कीजिए अपने गानों को, थोड़ी सी मोहब्बत दिल में रख कर हमें मैसेज कर दीजिए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग जाएगा स्पेशली किसी के नाम जिन्होंने चाहा, लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना जो बहुत ही पसंद है उनको, तो मैं कहती हूँ ओ सनम तेरे हो गए हम। अरे हम तो बिल्कुल सच में आप सबके हैं, इसीलिए तो हम आ जाते हैं आपके पास हर शाम 7 से 9 बजे तक। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
2: RM3 Radio.

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की आवाज में। क्या गाना, मतलब यानी कि 8 मिनट का गाना, बट ऐसा एहसास हो रहा था कि डांस करो यहाँ पे। और जो टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं ना, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे डांस, या जो घर में सुन रहे होंगे उनको भी बस मूड आ गया होगा भाई। सैटरडे सैटरडे को इतना स्लो स्लो थोड़े ना जाने दे सकते हैं। इंजॉय करना है अपने नए नए गानों को, पुराने पुराने गानों को, और जो स्पेशली जो मूड होता है ना शाम का, और वो भी सैटरडे का, जहाँ पर आप पूरे घर में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारते हैं, और उसके साथ कहते हैं कि हाँ भाई हम भी साथ साथ तुम्हारे चलेंगे। तो चलिए भाई इंजॉय कीजिए गानों को। ये प्यारे से मैसेजेस आपके, भाई दिल करता नहीं है मेरा कि आपके मैसेजेस को बिना पढ़े या तो टिकटॉक कट करूँ या मैं कहीं चली जाऊँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। सूद सर फ्रांस से जुड़े हुए हैं साथ में और इंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे गाने। उन्होंने बहुत ही प्यारा सा गाने की फरमाइश किया है, हम बिल्कुल चलाने वाले हैं। सुरेखा जी अपने हस्बैंड आनंद जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, और उनको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। भी ऐसे तो होता है, जब कोई जी नहीं पाता है तभी तो एक अपने खास के लिए कोई मैसेज भेजता है। एजे साथ जुड़े हुए हैं और एजे सभी को कह रहे हैं हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अंजू साथ दे रही हैं और कविता जी साथ दे रही हैं। नैना जी अपने एलविन जी कह रहे हैं नैना जी के लिए गाना चला दो। भाई क्यों ना चलाएं हम, आप सबके गाने बहुत ही स्पेशल होते हैं, आपकी जो फरमाइश होती है बहुत ही खास होती है। तो इन्जॉय कीजिए अपने गानों को, साथ में खूबसूरत बनाएं अपनी शाम को, और आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए क्योंकि गाने आपके हैं, प्रोग्राम आपका है, और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी लिसनर्स जो हैं सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए हम सब एक दूसरे के हैं। तो चलिए ये वाला गाना आप सबके नाम।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़ की
1: आवाज़ 8:07 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। आप लोग मुझे पता है अपने घर पर एंजॉय कर रहे होंगे, कई लोग आराम से रेस्ट कर रहे होंगे सोफे पे पैर पसार के, कई लोग अभी ऑलरेडी जैसे हमारी रिहाना जी हैं वो कह रही मैं ऑलरेडी बेड पर चली गई हूँ पर प्रोग्राम सुन रही और बैठे बैठे लेटे लेटे डांस कर रही हूँ। तो मुझे पता है एहसास होता है कि ये जब गाने चलते हैं एक तो आप इंजॉय करते हैं और थोड़ा सा बाहर ठंड है, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा कहते हैं ना कि रोमांटिक रोमांटिक हो रहा है और उस समय अगर ऐसे गाने चलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। पर सबसे बड़ी बात है तब जब आप अपने पैर

0: परिवार पेरेंट्स के साथ बैठे हो और उनसे कभी पूछो कि मम्मी आपके या पापा आपके टाइम में आपका फेवरेट गाना कौन सा होता था, वो उनके पास बहुत लंबी लिस्ट होगी। पर अगर हमसे कोई पूछे अचानक से कि आपका कौन सा गाना है, तो हमें एटलीस्ट एक या दो मिनट लग जाएंगे ये बताने के लिए कि हमारा फेवरेट गाना कौन सा है। क्योंकि हमारे भी गाने बहुत सारे होते हैं, पर उनके जो गाने होते हैं ना, उसके अंदर एक एहसास अलग सा होता था। कभी कभी किसी पेरेंट्स को याद करना, जैसे कल राखी थी तो भाइयों को याद करना, कोई त्यौहार आ जाता था तो उसके अंदर एक स्पेशल सॉन्ग उनका रेडी होता था। तो ये गाने जो होते हैं ना कहीं आपको यादों में ले जाते हैं, और ये जो यादें हैं ये हमेशा बनती रहती हैं। और कभी कभी थोड़ी सी यादें जब ओझल होने लगती है, घूमने लगती है, तो हम उसे ओझल होने नहीं देना चाहते। तो हम चाहते हैं कि भैया ऐसा गाना चले जो कि आपकी यादों को फिर से जवान कर दे। ये गाना बहुत ही लोगों की पसंद का गाना है, बहुत लोगों ने इस गाने की फरमाइश किया, बट स्पेशली कुछ लोगों ने कहा प्लीज़ इसको ज़रूर चलाइएगा, तो बिल्कुल चलाने वाले हैं। ज्ञाना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संगीता इब्राहिम जी पोटली से साथ दे रहे हैं और एक बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रहे हैं। शारदा जी सभी सुंदर फैमिली को विश कर रही हैं, और चांदनी जी भी साथ दे रही हैं। गुलशन जी भी अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बस अब हम जुड़ चुके हैं, टिकटॉक से हम बाहर आ गए। आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। और हम आपको इतना बोलेंगे, शाम का टाइम है, थोड़ा सा कुछ ऐसा खा पी लीजिए जो बेड पर बैठे बैठे सिप सिप ले सकते हैं। गर्म दूध ले लीजिए, कोई केसर डाल के, इलायची डाल के, ये टाइम तो है जो इंजॉय करने वाला है। ये गाना आप सबके लिए, इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।
1: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बज के 24 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। कहते हैं ना जिंदगी में ये रेडियो ऐसा है या टीवी ऐसा है, कई रिश्ते नाते कई बंधन ऐसे बंध जाते हैं यहाँ पर कि आपको एहसास ही नहीं होता कि वो आपके परिवार के सदस्य नहीं है। मुझे तो इतने सारे कॉल्स आते हैं किसी को, कोई मुझे कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मुझे एहसास होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का, इतना प्यार देते हैं और इस रिश्तों में हम हमें साथ रखते हैं। RM3 हमेशा आपके साथ है हर सुख और दुख में। मैं तो हमेशा बोलती हूँ MBC ने जो ये रेडियो जब भी शुरू किए होंगे आप सबकी फरमाइशों को सोच के आपकी खुशियों को सोच के ही बनाए होंगे और उसमें अब हम भी एड ऑन हो चुके हैं तो हम तो यही बोलेंगे थैंक यू सो मच। कहते हैं ना हर जो वीकेंड होता है उसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा बने कि आपको किसी को सब परिवार को बाहर ही लेके जाना है और हर वीकेंड मस्ती ही करनी है। कभी कभी जो घर में रहते हैं थोड़े से गाने सुनते हैं, घर का खाना खाते हैं, जोन में रहते हैं क्योंकि आज भारत थोड़ी सी बारिश है ठंड है तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे जो कह रहे होंगे बच्चों को भैया आज घर पे ही रहो एंजॉय करो घर पे ही। तो हम कहते हैं कि अगर आप घर पर हैं और गाने एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फरमाइशें जो आप अपने भेज रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं तो करते रहिए, यही शाम आपकी बहुत खूबसूरत बन जाएगी और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। धानी जी साथ जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। फूलवंती जी वो हमेशा जैसे फूलों के जैसे बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ सच अ ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू सो मच, आपने इतने कॉल्स किए और मुझे हर्ट हो रहा था कि आप इतने सारे कॉल कर रही हैं और मैं उठा नहीं पा रही थी, बट थैंक यू सो मच आपका साथ देने के लिए। अनीता जी फ्लिकॉम फ्लैग से साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। डैनन श्वेता रविश प्रिशा लोवेश आप आदि फैमिली के लिए एक स्पेशल गाना चलेगा, हंस रहते हैं बहुत, नेक्स्ट सॉन्ग उन्हीं के नाम के लिए जाएगा। और साथ में प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं साथ बेल्जियम से और प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, वो भी चलेगा। और मैं तो यही कहूँगी कि आप सबकी जो फरमाइश है सभी की ही बहुत खूबसूरत होती है, बस थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे सॉन्ग्स करते रहने पड़ते हैं, देखना पड़ता है टाइमिंग कौन सा है, कौन से टाइम पे वो गाना सूट करेगा, वरना ऐसा नहीं होता कि हम आपके गाने ना चलाएं। बिल्कुल आपकी पसंद के गाने सब हाजिर हैं यहाँ पर।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सारे रंगों से है। बहुत ही प्यारा सा गाना था और मैं तो कहती हूँ ये जो गाने हैं ना हमेशा ऐसे टाइम को याद दिला देते हैं जिसको हम कई बार भूल जाते हैं और कई बार हम भूलना चाहते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं हमारे गानों की प्ले लिस्ट में कोई ऐसे गाने होने चाहिए जो नए हों।

0: यादें हों, पर फिर भी हम वहीं पर मुड़ कर चले जाते हैं 80s, 90s, 60s, 70s, क्या करें भाई, हमारा दिल उन गानों के बिना नहीं लगता। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका भी हाल मेरे जैसा ही है। कई लोगों के मैसेजेस आए और कई लोगों के कॉल्स आए, कईयों ने अपनी अपनी इतनी सारी फरमाइशें बताई, पर हम सारे गाने नहीं चला पाते हैं, हम क्या करें, उसके लिए तो हम थोड़ा सा सॉरी बोल ही देते हैं। पर आपको भी समझना चाहिए हमारे पास इतने सारे गानों को कैसे चला पाएंगे। तो आप नाराज़ ना होइएगा, अगले हफ्ते के लिए और भी लिस्ट बनाते रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। ये जो गाना आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा गाना है, मतलब इसकी जो धुन शुरू होती है और अंत तक मतलब मस्त ही मस्त है। तो इंजॉय कीजिए इस गाने को और उसके बाद फिर से हम जुड़ते हैं आपके साथ।
1: RM3 Radio.

0: खेलों की आवाज
1: 8:53 हो चुके हैं और मैं क्या कहूं दोस्तों, ये जो शाम है बस एंड पर आ जाती है और जब आती है तो थोड़ी सी उदासी छा जाती है, पर हम आपको उदास नहीं होने देंगे। हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, मुस्कुराते रहो, अपनों का ख्याल रखो, किसी के दिल में जुड़े रहो। कोई आपसे पूछे कैसे हो, कहाँ हो, ठीक हो, ज़रूर इमीजिएटली रिप्लाई दो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि कोई इंसान आपको कितनी शिद्दत से याद कर रहा होगा। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम में अगर कोई ज़रा सा भी पूछ लेता है हाल चाल तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपका भी दिल कर रहा है किसी को कॉल या मैसेज करने का, ज़रूर कीजिएगा, गानों के साथ जुड़े रहिएगा। कल है संडे, संडे को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है, थोड़ा सा हंसना है, हंसाना है, और आज सैटरडे को थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अब कल देखेंगे आराम से। कहते हैं ना, पसर के सोना है, तो हम आपको यही बोलेंगे, जो एक उम्र में है वो तो आराम से रेस्ट कीजिए।

जो थोड़े से यंग हैं कुछ पढ़ाई कीजिए, एक दो पेज पढ़िए, और जो और यंग हैं जो कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको हम यही बोलेंगे थोड़ा सा पढ़ाई करो, दो चार घंटे पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए। आपकी अगर ज़िंदगी बन गई तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, नाना नानी दादा दादी पेरेंट्स सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए भाई, हम तो आपको कहेंगे गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। आप सब जानते हैं आखिरी गाना जो होता है मेरी पसंद का होता है आप सबके लिए, तो बाकी सारे गाने होते हैं आप सबकी तरफ से आप सबको। तो एंजॉय कीजिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। RM3 Radio.

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। भोजपुरी धड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन साथ देवत हुआ अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सब कोई के साथ देवे खातिर रत्ना चलाल हुआन। अभी रात के 9:02 हुआ था और भरपूर मनोरंजन के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जहाँ पर तू पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकब 4020885 जी 4020885 पर औरी मिसाज भी विदा करे सकब 5251700 पर। तो चला तो ठंडा जस्ती मारता ठंडा जस्ती करता और ऐसा ठंडा के मौसम में तनी गर्माहट भरा कार्यक्रम और हई कार्यक्रम मजेदार रही रात के 11 बजे ले। तो चला आज के लाजवाब कार्यक्रम के शुरुआत करब जाए एगो बढ़िया गीत संगे और हई गीत है संभावती दुमन के आवाज में रखल आज के हई पहला गीत शिव सागर एल्बम से लेवल गई। तो चला करब जाए एगो बढ़िया शुरुआत

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखल जाता और अभी 9:07 हो गल बाद ढेर कोई हमने के संगे जुड़ गल हवन और सब कोई है ये बोला था तनी तड़का मार द ताकि है जो ठंडा मौसम चलाता ऐसा ठंडा के मौसम में तनी गर्माहट चलाई और काहे न बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत जब सुनब तनी गर्मी ऐसने बढ़ जा रहा तो चला है जा पर हमनी के वाकवा से फुलवंती जी जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर पति देवानंद बेटी भावना बेटा उषन और पीतो बगल से जुड़ गल हवन अमृता गणेश और उनकर दुगो नातिन परी और सोनिया संगे हवन बेटा विषम और पतो हवन मीनाक्षी और संगे संगे है जा पर घों गोप से साथ देवत हवन सुनीता जी उनकर बहिन कोंगोमा से विमला जी और बहिन हवन वीना जे घों गोप से साथ देवत हवन और अमृता जी घों गोप से और वीना जी गुडलैंड बगल से तो चला हंसते मुस्कुराते है जा पर अनीता लाल जी भी साथ देवत हवन और सब ईतू परिवार गोगा परिवार नागेश्वर परिवार खातिन रोशन सदा सिंह के अगला गीत जो है उमंग करत हवन वंदना हमर सोना तो चला लाजवा भाई कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन हमनी के जोन चचा ह का जनी चचा हमनी के बोले जाने ल अभी बहुत है व्हाट्सएप से भी करता इंस्टाग्राम पे भी अपन अकाउंट बना देले हवन अरे बैठे बैठे पूरा दिन सब कोई के स्टेटस देखते रहेला तो हमनी के बोले जाने ल हमर हौ दोस्त है न संगतिया है न व्हाट्सएप पे कल स्टेटस डाल देलक हम देख ली

0: हमर त चक्कर खा गइली हम बोली काहे चाचा ऐसे कोन चीज स्टेटस डाल देलक बोले हां ऐसे स्टेटस डलले बा हई उमिर में का बोलब हम बोली काहे कोन चीज डलन बोले हां एगो शायरी डलले बा शायरी में बोले इशक अधूरा बात अधूरा रहे द इशक अधूरा बा अधूरा रहे द जे पूरा हो गल त पड़ी हमनी के ठंडा में बर्तन धुआवे लौगा धुआवे झाड़ू मरावे हइये से अच्छा बा हमर इशक अधूरा रह गल त रह गल बुझाता हमनी के ताना मारता
1: काहे चाचा तू लुगा धोएले ठंडा में
0: ए धत सब कोई के नहीं बोले के

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तड़का।
1: भोजपुरी तड़का का कार्यक्रम जैसे चलता है, जितना भी गीत चलावत है, यही सब तोहर पसंद के है। और बढ़िया बढ़िया गीत संगे आप सब कोई हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवन है, जहाँ पर गायत्री जी नोएल फ्रांस से हा साथ देवत हवन। और बहुत खुशियाली के साथ बोले आज लागी ना ही छूटे राम तनी हमर खातिन चला द बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन मेबक से भौ और उनकर नन भौजी हवन शकुंतला मोहतालोंग से खास संगतिया हवन गीता बाई जिनवल फौस से ही हमनी के हमेशा साथ देते रहेलन। और है ये गीत मांगेलन चाची ललिता कुशल त्रियोले बगल से और उनकर सब बहिन लोग सुदेवी देवीना ज्ञानी छोटी साथ हवन दा भाई हरीश भाई आत्मा राम सुखलाल मौसी माला राम जावन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिर और जाने ल है गीत ढेर कोई खुशी रहेलन सा सुने चला है ये गीत जे तोहर पसीन के गीत है गीत तोहरों खातिन भी चलावत है और बढ़िया से बढ़िया गीत खातिन बस ऐसने साथ देते रहिए जा। और ऐसन ठंडा के मौसम में चाचा के बड़ी मन कर लो ने को गीत शुरू कर देला को इन दिन त हम त सोचली वाह चाचा त कलाकार बन गल बा त जाने ल गीतवा के त तोड़ मरोड़ के कैसे गावे के शुरू करलन चाचा गावे के शुरू करन बोले कैसे बनी हो चाय कैसे बनी चीनी हो गल महंगा बाय कैसे बनी हमर चाय कैसे बनी हमर चाय कैसे

भोजपुरी तड़का भोजपुरी धड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम लाजवाब कार्यक्रम संगीत जितना कोई हमने के साथ देवा थवान सब कोई के चेहरा पर ऐसे ने हंसी बनल रही औरी चला अभी 9:20 हो गल बा मजेदार कार्यक्रम संगे अगला गीत जन है राजा बंधु के आवाज में रखल है गीत के मांग कर ले हवन शांति जी तेगूर से उस साथ देवत हवन और दागोचिया के सब मराठी परिवार खातिन और खासकर अपर दागोचिया के उनकर भगिना ओम खातिन और उनकर एगो भैया हवन जे पॉम्प्लेमूस में काम करेला लापुलिस हवन लापुलिस भैया बलराम खातिन तो चला बलराम भैया जे तू सुनत हव ती गीत तोहरों खातिर भी चलावत है नहीं खींच चाची शांति से खुशी से आज तोहर नाम जोड़ देले बा और आज मजेदार कार्यक्रम संगे चला आगे बढ़ब स औरी चाचा चाची के किस्सा औरी पप्पू भैया के किस्सा तो जाने ल पप्पू भैया बहुते संस्कारी ह कौन दिन भेटा गल चाचा से त चाचा के बोले चाचा दिनवा कैसे जाता बोला त चचा बोले का बोला बेटा का बोला दिन भर ताने अरे रात में उदास गाने और बाकी तो सब भगवान जाने

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:27 हो गल बा और हईजा पर हमनी के संगे सजादा परिवार जुड़ गल हवन थियोले बगल से और साथ देवत हवन दीपशिका बुलोगाम और अगला गीत जो है पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज में रखल नदी किनारे सुनार है गीत के मांग कर ले हवन तो चला सब परिवार खातिन चलाओ अब जा है बढ़िया संगीत और हमर चचा चाची के किस्सा जाने लकोन दिन चचा चल गल दोगतिया हियाँ तो दोगतिया हियाँ जाके दोगतिया के बोले डॉक्टर साहब जाने ल हमनी के गत्ते गत्ते समझ में आवता तो दोगतिया बोले कौन ची चचा बोले है ये कि हर बात हमनी के गत्ते गत्ते समझ में आवेला तो डॉक्टर बोले अरे वाह चचा तू तो बड़ी समझदार हो गल हवा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला है जा पर एक गो और गाना पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज में और है गीत चलाओ अब जा चाची शाम।

सांता सुकागी खाते हैं जी हमने के अभी साथ देवा थवन से जमिल फोरसाइट से ढेर ठंडा करा था और ऐसा ठंडा के मौसम में मजेदार गीत चला उनकर पतो हवन किरण और बेटा हवन सुदेश गाविन सुजीत और अशोक साथ देवा थवन भावेश और संजना और उनकर सब सुकागी परिवार खाते अगला गीत चलाओ अब जा और जाने ला हमार पप्पू भैया जा

तो चाचा बोले नहीं बेटा घुमरी नहीं लगेला, जब चार है सात फेरा जब शादी के समय में तू ले बा तब तोरा घुमरी नहीं लगी, पर बाकी पूरा जीवन में पूरा जिंदगी भर तोहर कपार घूमते रही ऐसन कलिते के तोहरा घुमरी लगी के का बोलब।

भोजपुरी तड़का नौ बजकर 40 मिनट आउरी चला हाईजा पर हमनी के साथ देवत हवन अमरोज नुएल देखू व्याद से और साजन के देवल सारी हई गीत के उमंग कर ले हवन सुनीता नन को क्या आवाज में और साथ देवत हवन रोज बेल से नाजिया नाजिया और सुमेहरा आयान और फिजाल और सब बुचाना परिवार और लौतन परिवार नुएल देखू व्याद से चला मजेदार कार्यक्रम आउरी अगला गीत के संगे संगे जाने ला हमर चचा जो है ना भगवान के बहुत पूजा करेला भगवान से जाके वो बोले हाथ जोड़ के ऐसन प्रार्थना में डूब गल और जोर जोर से लगे भगवान के बोले भगवान तू हमनी के बचपन देलक औरी 15 बरिस में हमर बचपन छीन लेलक बाद में तू हमनी के जवानी देलक वो भी तू 10 बरिस में हमसे छीन लेलक अब शादी के बाद है लुगाई दे देले हवा तो वापस लेवे के भुला गल हवा का हम तो खाली याद दिलावत है भगवान तनी कृपा कर दो हमनी पे

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: चला है जापर बादवाग विदेशी जी हमने के संगे जुड़ गल हवन और कमल और विभा चिंतामणि की आवाज में रखल है। अगला गीत करब जा उनकर खातिन और बस साथ देते रहिए जा काहे के है भी एगो बहुत बढ़िया गीत है और बस काम करते रहे के काम करे के बहुत एगो स्फूर्ति रहेला एगो ऊर्जा रहेला। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे जितना कोई काम करत हवन उनकर सब कोई खातिन और उनकर सब परिवार बादवाग विदेशी जी के परिवार खातिन चलाओ अब जा है अगला गीत और मजेदार गीत के बाद एक बार फिर उसे चचा चाची के किस्सा तोहरा सुनाओ अब जा।

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला है जहाँ पर हमने के साथ है देवा धवन अनीता जी फ्लिको फ्लाक बगल से और अनीता जी हमने के हई गीत के मांग कर ले हवन मैंने प्यार किया फिल्म से लेवल गईल और हई गीत चलाओ अप डाउन कर खातीन खासकर शोभा जी हवन अनुराधा और लक्ष्मी उनकर तीन गो बहिन और जितना कोई साथ है देवा धवन उन सब कोई खातिन हई ये गीत चलाओ अप डाउन शारदा सिन्हा के आवाज में रखल और मजेदार गीत संगे सब कोई साथ देते रहिए जा रात के 11 बजे ले अभी 9:53 हो गल बा और हमर चचा गजोधर जाने ल कोन दिन एगो ऐसे बैठल बैठल कुछो काम करत रहल तब एकु तो कर कान में एगो आवाज एगो आदमी हल्ला करत रहन हाँ बाहर से हल्ला करत रहलन 100 रुपया में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खावे सकी तो चचा तो भाग के हाली से धौक के गल बाहर बोले 100 रुपया में कौन ची बेचता ऐसन की पूरा परिवार बैठ के खाए जैसे बाहर जाके देखलन तो जानत हव वो आदमी कौन ची बेचत रहलन एगो चटाई बोले पूरा जिंदगी अपन परिवार संगे बैठ के खावे सकब

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बातें और अभी एक घंटा बीत गलबा और एक और घंटा रह गलबा। रात के 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। हंसते मुस्कुराते सबको बस साथ देते रहिए जा और ही बिल्कुल हमनी के तनी धीरज तनी धैर्य रखिए। काहे कि हमनी के सबको बोले हमर गीतवा तनी पहला चला दहो। जरूर चलाओ, अब त्राका नहीं कर और ये हमनी के साथ देते रहिए जा। और ये चला अगला गीत जन है पंडित राज वर्मा खातिन, चलाओ अब जाओ अगला गीत जन है उनकर माँ के याद में। वो उनकर मामा जी के बहुत बहुत याद करेलन सा और सब बड़ुआ परिवार खातिन और पीतों से तू साथ देवत हवा पंडित राज वर्मा जी और पीछे काफ़े से सब भाई लोग खातिन और सेवास्तोपोल से हवन पंडित बंधु। तो चला भोजपुरी बॉयज दुल्हा राजा एल्बम से लेबल गई हई गीत करब जा तोहर खातिन और ये हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा। हंसते हंसते जीवन आगे लेके जाप सब। तो चला अभी थोड़ा घड़ी में एगो और चुटकला तोहर खातिन हई गीत के बाद।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लाजवाब कार्यक्रम संगे हैजा पर कुमारी जी दागोचे से साथ देवत हवन सब उस्ताविया परिवार के संगे साथ गो बहिन और उस्ताविया परिवार के साथ साथ कोंडबास के हवन रामफल परिवार खातिन और संगे संगे तीन गो बेटी लता प्रतिमा और सुधा और पतो हवन कामिनी और नाती हवन आयुष और अमृता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन अमृता गणेश भी साथ है देवत हवन संगे संगे हाइजा पर साथ देवत हवन गीता राधे की सुन अंजू अमिता फूलो और बड़की मनुआ खाती नगला गीत संभावती दुमन के आवाज में रखा है भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे बस साथ देते रहिए जा और चाची इतना खीस करके चचा के बोले जे हमनी के जानकारी मिलल कि तोहर संगे तू कोई संगे चक्कर चलावत हवा तो हमनी से जस्ती बुरा कोई नहीं रही तो चचा बोले अरे पगली तू चिंता काहे करत हवा हो तोरा नहीं पता चले देव अब कि हमनी के चक्कर कोई के संगे चलता

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और लॉजे बगल से छोटी हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन भैया हरीश भैया आत्माराम और ललिता जे ललिता जी हमनी के साथ देवत अवंत्री उले बगल से और दादी प्रभावती खाती नगला गीत के उमांग कर ले हवन बसंत सुपोल के आवाज में तो चला है ये गीत कर अब जाऊ उनकर खातिन उनकर सब परिवार संगे जितना कोई हमनी के सुनत हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा है ये गीत और हमनी के चाचा बहुत कबो कबो तो कबो कबो मस्ती भी करेला कबो कबो ऐसन खीस में चाची के बात सुना देवेला और कबो कबो ऐसे शायरी करेला सा कि का जानी कहाँ से ओकर दिमाग में है सब बतवा चलावेला चाची के बोले हम बुढ़िया तोहर खातिन एगो शायरी लिख ले हैं सुनबे तो चाची बोले हाँ सुनावो हो बोले देखा शायरी सुन के बहुत अच्छा लगेला तो हम बोलब तोहरा तू हमर चंद्रमुखी हम तोहर सूरजमुखी तू हमर चंद्रमुखी हम तोहर सूरजमुखी तो चाची बोले तू हमर संगे दुखी हम तोहर संगे दुखी तो चाचा तनी आजूते कर देला बोले है तोहर मुंह तनी बंद कर देबा तो हम भी सुखी और तू भी सुखी बोला ऐसन कोनो शायरी बनेला हो

0: मैरिज हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला है जहाँ पर सब कोई है ये बोला था राखी निमन से बीतल की नई। अरे बहुत मजे से बीतल और सब परिवार संगे जब एगो समय बीतेबा तब बहुत अच्छा समय बीतेला। तो चला है जहाँ पर कल्याणी जी हमनी के बॉस शेगी से साथ देवत हवन और चार गो भाई खातिन आई

गीत के मांग कर ले वन लागिना ही छूटे राम के है गीत है तो रखिया तो चल गल बाटे पर आज भी है गीत बहुत सब कोई है समय में ढेर कोई है गीत के मांग कर ले बा बहुत बहुत खुशियाली के साथ है जब शोभा जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन का तो बोन से और सब सीनियर सिटीजन खातिन जितना बीमार लोग हवन लोपिताल में जितना राजो सुनत हवन जितना रात के काम करत हवन उन सब कोई खातिन है ये गीत चलाओ अब जा और लागी नहीं छूटे राम के हई गीत बहुत मजेदार गीत तो चला हई गीत के संगे साथ देते रहिए जा हमनी के

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार गीत के संगे चला अगला गीत जनहा नाजीरा खातिन चला अबजा दागोचिया से ऊ भी अमनी के संगे जुड़ गल हवन और ऊ भी लागिना ही छूटे राम के हई गीत के ऊ बहुत खुशी हवन तो चले उनकर खातिन चला अबजा है अगला गीत लाले लाल होठवा और मजेदार गीत के संगे संगे

हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। 10:24 हो गल बा और हमनी चचा चाची के किस्सा का बोलब जाने ल। चचा हमनी के चाची के हमेशा खीस करावेला। चाची इतना प्यार से पूजा पाठ सब करेलन स और चाची बोले चचा के जाने ल हम भगवान शिवजी से हई श्रावण मास में भगवान शिवजी से हई प्रार्थना करले हई कि आवत 7 जन्म में हम हई घर के पतो बनब। अगला जन्म में भी हये घर के पतो बनब। त चचा के द मुंह टेढ़ा हो गल। चचा बोले हये जन्म में हई घर बेच देवब हम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ये 10:31 हो गल बा हाई जापन चाची नीता केदी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और साधेवत हवन सेंट जूलिया विलास से उनकर खास सखी स्वादी का संगे जे हमेशा बिलवेदिया से हमनी के साथ देते रहे लंसा और आज के कार्यक्रम में वो भी हमनी के साथ जुड़गल हवन तो बस प्यार से साथ देते रहिए जा और अगला गीत जन है बहुत ही मज़ेदार गीत है गीतवा चलाओ अब जा मानती जी खातिन मानती जी हमनी के नुवल फॉन्स बगल से साथ देवत हवन उनकर बहिन हवन आनंती और आरती दुगोपत्तो हवन उर्वशी और अनुषा साथ हवन अमिक्षा गिरीशा मितिशा और हवन भव्य पुष्कल और हितांशु खातिन तो चला ढेर ठंडा करता और ऐसा ठंडा के मौसम में बिजवाओ तीस संपत के आवाज में रखल है अगला गीत कर अब जा तोहर खातिन तोहर सब परिवार खातिन
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम में चला एगो बहुत मजेदार गीत के मांग कर ले हवन श्यामा जी जी अपनी के साथ देवत हवन अभी और अगला गीत जो है गंगा माँ तोहरा पियरी चढ़ाई बो फिल्म से लेवल गईल हई गीत है
0: तड़का
1: और हिंदी फिल्म के हई गीत के मांग कर ले हवन श्यामा जी श्यामा रघुनंदन जी गाँव गोप से हमनी के साथ देवत हवन भैया जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता संगे हवन केशव और युधिष दुगो भगिना और साथ हवन उनकर खास दो सखी विश्वानी और वीना रामफल जी जे हमनी के हमेशा साथ देते रहेलन। तो चला हई गीत एगो विदाई के गीत है बहुत ही मजेदार बहुत ही दिल छुए वाला गीत है। चला सुनब जा संगे मिल के हई लाजवाब गीत

जहां पर हिंदी फिल्म में भोजपुरी गीत गावल गईल बाते और ये भोजपुरी भाषा के संगे संगे चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है। 10:40 हो गल बा और हमनी के संगे है जहाँ पर कुमारी जी दागोचे से बोले हमर खातिन अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अयोध्या के राज तनी चला द हमर मन तनी खुशियाली हो जाए काहे नहीं हो बस आप सब कोई खुश रहिए। तो चला अगला गीत चलाब जा तोहर खातिर।

भोज भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जहाँ पर हमनी के स्थानीय कलाकार के गीत चलावत है वहाँ कबो कबो हमनी के जो हिंदी फिल्म है वो में भी बहुत ऐसा फिल्म

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और काल सब कोई रक्षाबंधन के पर्व मनैलन, पर आज भी बहुत प्यार से रक्षाबंधन के एगो गीत के मांग करत हवन भाई माहेन और उनकर दीदी मान खातिन है अगला गीत चलाओ अब जा रक्षाबंधन खातिन और चलाई कर संगे संगे एक बार फेरों से जितना कोई सुनत हवन उस सब कोई के रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन। ललिता के जादा के आवाज में रखल हाई गीत करब जा उनकर खातिर।

0: बाबू के जन्म होल बाहो तारिया बजाओ।
1: अविनाश रामधीन, अमृता विशेषर, रेखा कुंजल की आवाज मेरा ख्याल है गीत के संगे आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त कर अब जा और एक बाद ठीक 11 बजे से लेके 12 बजे ले सुनहरे पल जहाँ पर पुराना गीत के कार्यक्रम तू सुने सकबा और आज के जो कार्यक्रम रही वो रही बिल्कुल आप सबको एक खातिर चलाओ अब जा अगला जो कार्यक्रम रही सुनहरे पल हाई कार्यक्रम गिनीशा सबको के साथ दी अंजा माफ करिए जा आज के कार्यक्रम बिल्कुल सुनहरे पल कार्यक्रम में नीतूषा आप सबको के साथ दिए जा जहाँ पर पुराना गीत चली चला एक संगे रत्ना को दीजिए अनुमति फिर उसे भेट आप सो बढ़िया कार्यक्रम संगे आवत शाम देखे रात के 9 बजे से 11 बजे ले तब तक ले अपन ख्याल रखिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए काहे के जीवन बहुत जोली बा बहुत सुंदर बा हंसते रहिए एकर संगे रत्ना को दीजिए अनुमति शुभ रात्रि नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओ, आप सबका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में। जी हाँ, इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। याद है हमको, पिछली बार हम रफ़ी साहब के डुअट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज भी उन्हीं पर और उनके प्यारे प्यारे रोमांटिक डुअट्स आप तक पहुँचाते रहें। तो साथ निभाते रहिएगा रात्रि के 12 बजे तक। तो हम पहुँच आए थे उनके चौथे स्टार के बारे में, इमोशनल और मिलांकोलिक डुएट। रफ़ी साहब दर्द को कभी आर्टिफिशियल नहीं बनाते थे। उनकी आवाज़ में आंसू की जगह एक कंट्रोल्ड इमोशनैलिटी होती थी। इसी वजह से उनके सैड सॉन्ग्स और इमोशनल डुएट्स लिसनर्स के दिल तक सीधे

पांचवा स्टाइल था क्लासिकल बेस्ड डुएट। रफी साहब का क्लासिकल ट्रेनिंग उनकी सिंगिंग में हर जगह नजर आता था, चाहे गानों में डिफिकल्ट तान हो, मुरखी हाई नोट्स या इंट्रिकेट मेलोडिक मूवमेंट, रफी साहब बहुत आसानी से उसे हैंडल कर लेते थे। दैट्स व्हाई इसी वजह से कंपोजर्स उन पर डिफिकल्ट कंपोजिशंस के लिए भी पूरा भरोसा करते थे।

और फिर आता है उनका कॉमिक और मस्ती भरा डुएट स्टाइल। उनकी कॉमिक सिंगिंग एक अलग ही कला थी। वो आवाज को कैरेक्टर की पर्सनालिटी के हिसाब से मोड़ सकते थे। उनकी प्रोनाउंसिएशन में एग्जैजरेशन भी होता था, लेकिन सुर कभी छूटता नहीं था। इसी कॉम्बिनेशन ने उनके फनी सॉन्ग्स को टाइमलेस बना दिया।

रफी साहब की एक खासियत ये भी थी कि वो अपने को सिंगर को कभी ओवरशैडो करने की कोशिश नहीं करते थे। ड्यूएट में उनका ऑब्जेक्टिव अपनी आवाज दिखाना नहीं बल्कि पूरे गीत को खूबसूरत बनाना होता था। ये एक महान प्लेबैक सिंगर की पहचान है। उनकी आवाज सिचुएशन के हिसाब से कभी लीड लेती थी, कभी पीछे हट जाती थी और कभी दूसरी आवाज को म्यूजिकल स्पेस भी देती थी। इसीलिए रवि साहब के ड्यूएट सॉन्ग्स सिर्फ दो सिंगर्स का गाना कहना उनके साथ अन्याय होगा। ये असल में दो आवाजों के बीच एक म्यूजिकल कन्वर्सेशन हुआ करता था। कभी वो कन्वर्सेशन आंखों से होती थी, कभी लफ्जों से, कभी खामोशी से और कभी सिर्फ सुरों से।

चांद न निकला, दसक गया शब का अंधियारा, दसक गया शब का अंधियारा। आओ आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, फूल सर रुख और शब।

आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, फूल सा रुख और शबनम शबनम पंचलत में लुक के रहे हम, फूल सा रुख

रफी साहब की आवाज का सबसे बड़ा जादू शायद यही था कि उनकी सिंगिंग में इंसानियत थी। वो गाते वक्त हीरो की आवाज बन जाते थे, लेकिन उनकी सिंगिंग में रफी साहब का दिल भी महसूस होता था। इसलिए उनके रोमांटिक ड्यूट सिर्फ फिल्म के सीन्स तक सीमित नहीं रहे, वो लोगों की पर्सनल मेमोरीज का हिस्सा भी बन गए।

रफी साहब के डुएट सॉन्ग्स हमें ये सिखाते हैं कि अच्छा म्यूजिक सिर्फ आवाज का खेल नहीं होता, उसमें मेलोडी होती है, लिरिक्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, केमिस्ट्री होती है और सबसे बढ़कर इमोशन होता है। रफी साहब ने इन सभी एलिमेंट्स को अपनी गायकी में इतनी खूबसूरती से मिलाया कि उनकी आवाज़ जेनरेशंस के पार पहुंच गई।

उनकी आवाज में मोहब्बत की मिठास भी है, दोस्ती की वार्म्थ भी, शरारत की चमक भी, जुदाई का दर्द भी और जिंदगी को सेलिब्रेट करने की खुशी भी। शायद इसी वजह से रफी साहब के डुएट सॉन्ग्स कभी पुराने नहीं पड़ते। टेक्नोलॉजी बदल गई, म्यूजिक के फॉर्मेट्स बदल गए, लिसनिंग हैबिट्स बदल गई, लेकिन रफी साहब की आवाज का जादू आज भी वही है। और जब एक खूबसूरत फीमेल वॉइस रफी साहब की आवाज के साथ मिलती है तो वो सिर्फ डुएट नहीं रहता, वो एक म्यूजिकल लव स्टोरी बन जाता है। दो आवाजें मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करती है जो लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा होता है।

रफी साहब के लिए शायद इसलिए कहा जाता है, आवाज उनकी थी लेकिन एहसास हम सबका था। उन्होंने गाने गाए जरूर, लेकिन उन गीतों में हमने अपनी मोहब्बत, अपनी यादें, अपनी खुशियां और कभी कभी अपना दर्द भी सुना, और यही एक महान गायक की असली विरासत है। शुभ रात्रि श्रोताओं, प्रणाम।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: She likes to drop it low, man.

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। महलों में भी सीटी बजती है, इस बार केवल सीटी नहीं ढोल बाजा शहनाई भी। 4-1 के भारी स्कोर पर मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को चकनाचूर किया। सिटी के लिए रायन चर्की का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा, जादूगरी प्रदर्शन कहा जा रहा है। चर्की का डबल गोल स्कोरिंग मशीन अर्लिंग अलोन का भी डबल रहा। क्रिस्टल पैलेस का गोल एक ऑन गोल रहा गोलकीपर दोनारूमा का। नया मैनेजर एंजो मारेस्का बहुत खुश हुआ, लगातार दूसरी जीत और वो भी स्टाइल में। क्रिस्टल पैलेस की दूसरी हार मतलब अभी के लिए मैनचेस्टर सिटी लीग लीडर और क्रिस्टल पैलेस सबसे नीचे अंतिम पोजीशन पे। आज के मैच इस प्रकार हैं। अर्ली किक ऑफ अनफील्ड रोड में लिवरपूल नॉटिंगहम फॉरेस्ट का स्वागत करेगा। 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, 3:30 किक ऑफ। उसके बाद बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री सिटी हल सिटी, टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड, ये आज रात 8:30 बजे 8:30 किक ऑफ है। कल के मैच संडे फिक्स्चर, चेल्सी ब्राइटन, लीड्स यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड, सन्डरलैंड वर्सेस फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा इप्सविच टाउन के खिलाफ 7:30 बजे

7:30 kickoff. Monday match, Aston Villa versus Arsenal. जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की धुआंधार एंट्री, 5-1 से बायर्न म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को पछाड़ा। उपामेकानो ओलिजे जियाज पावलोविच के साथ एक ऑन गोल भी रहा। इस्माइल साइबाखी जिसने अपना पहला मैच खेला उसकी ओर से 3 असिस्ट रहे। फ्रांस में पारी सेंट जर्मेन बाल बाल बचा। लील 2-0 से लगभग पारी को लील गया था, पर इंजुरी टाइम में 4 मिनटों के अंदर अंदर पारी सेंट जर्मेन की लाजवाब एंट्री यानी उसका कमबैक, विटिन्हा और मार्किनोस पारी सेंट जर्मेन को डूबने से बचा पाए। पारी सेंट जर्मेन के लिए ये दूसरा ड्रॉ है। पिछले मैच में भी यही कहानी थी। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में रेक्साम 1 बर्मिंगम 2 और स्पेन के लालीगा में रेसिंग सांतोंदे 3 एल्चे 2 अलावेज 1 विलारियल 0। ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर बाजार बंद होने में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। ब्राडली बाकोला लिवरपूल में अभी ले नई आलबा यानी अभी तक नहीं आया है। बाहें फैलाए, हाथ पसारे, बेसब्री से लिवरपूल में बाकोला के आने का इंतजार किया जा रहा है, राह देख रहे हैं, पर अब तक केवल इन प्रिंसिपल कुछ ठोस नहीं है। उधर अस्टन विला पारी सेंट जर्मेन से इब्राहिम एम्बाय को साइन करने जा रहा है, दाम लगभग 47 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लिवरपूल ने भी एम्बाय को बाय करने का इरादा रखा था। एम्बाय केवल 18 साल का है, विला में उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। अस्टन विला एसी मिलान से राफा लियाओ को साइन करना चाहता था, पर लियाओ गलातासराय में चला गया। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के ड्रॉ कल निकाले गए। यूरोपा लीग में प्रीमियर लीग से संडरलैंड, बोर्नमुथ और क्रिस्टल पैलेस हैं। संडरलैंड के ग्रुप में है एजेड अल्कमार, एसी मिलान, डिनामो अंडेलेक, यागेलोनिया, लेच पोजन और लेवस्की सोफिया। बोर्नमुथ के ग्रुप में है एसी मिलान, रियल सोसिएदाद, विक्टोरिया प्लाजेंट, स्पार्टाफाग, स्टूमखाज, सेल्टा वीगो, अपोएल, बियर्शेवा और लिल स्ट्रोम। क्रिस्टल पैलेस के ग्रुप में रियल सोसिएदाद, लियों, स्पार्टा प्राग, साल्सबर्ग, लेच पोजनन, यागेलोनिया, होफनहाइम और बेसिक्टास। कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन है और ब्राइटन के साथ होगा मोनाको, पनातनाइकोस, खायोवा, गेताफे, काउनो, जालगिरिस, याब्लोनियक। यूरोपा लीग में सभी टीमें 8 मैच खेलेंगे, 4 होम 4 एवे, जबकि कॉन्फ्रेंस लीग में 3-3 मैच खेले जाएंगे, 3 होम 3 एवे, और इसी तरह क्वालिफाई होंगे नॉकआउट राउंड के लिए। क्रिकेट। इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में अभी द थ्री लायंस की दूसरी इनिंग्स चल रही है। पहले बैटिंग करके इंग्लैंड 290 पर ऑल आउट हुई, फिर पाकिस्तान को केवल 110 रन पर साफ किया। अभी इंग्लैंड 3 विकेट खोकर 81 रन पर खेल रही है। पाकिस्तान पर 261 रन लीड। आज तीसरे दिन का खेल होगा। विमेंस एशिया कप कल से शुरू हुआ। दुबई में थाईलैंड ने हांगकांग को हराया। आज यूएई वर्सेस श्रीलंका और कल टीम इंडिया की एंट्री होगी थाईलैंड के खिलाफ। ये महिला एशिया कप है। मॉरिशस में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 के 5वें सप्ताह में आज 1 बजे एएमजी पैंथर्स वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स, फिर कल 9 बजे एपीपी लियोपार्ड्स वर्सेस वन हेल्थ जगुआर्स और कल 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स। साइक्लिंग, किमले कुपियना इस बार क्लासिक लोरियों में भाग लेगी। ब्रिटेन टूर जीतकर आज फ्रांस में क्लासिक लोरियों में आएगी, ये भी वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। मॉरिशस में ही क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर कोइराची विलेज काउंसिल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। इस संडे को रोशनुआ टूर्नामेंट में सतानिक रोशतेया का मुकाबला ओलंपिक भामस्तान से। मोसेलमा सेंट एंड्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गला मैच वेटरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट एंड्रे मैदान में। सेंट जूलियन डुटमों में जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब की 60th एनिवर्सरी के लिए आज सैटरडे शनिवार को जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और नए पेटांक बुलोड्रोम की ओपनिंग होगी और अवार्ड सेरेमनी भी 4 बजे से जिल्फा स्पोर्ट्स
क्लब में। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो